0: तो जैसा कि आप जानते हैं कि रविवार को हम नहीं आते, शनिवार को नहीं आते, लेकिन आज हम हाजिर हैं. और चूंकि बड़ा दिन है, बड़ा दिन कल भी था, कल 10 अक्टूबर थी, तो 10 अक्टूबर का दिन जब बीतने लगा तो लगा कि एक बड़ा दिन बीत गया है. लेकिन जिस तरह से कल फ्लैश प्रोटेस्ट देखने को मिले थे, उसे देखकर साफ लग रहा था कि आज भी ऐसा ही देखने को मिल सकता है, और ऐसा ही हुआ भी. आज सवेरे भी कनॉट प्लेस के आसपास के छात्र प्रोटेस्टर्स जमा हुए और उन्हें सुरक्षा बलों ने वहां से हटा दिया. चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले बीबीसी संवाददाता राघवेंद्र राव की उस रिपोर्ट को देखते हैं कि कल डिटेन होने के बाद जिस तरह से छात्र नेता नेहा वोहरा आज फिर से एक बार जंतर मंतर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें एक बार फिर से डिटेन कर लिया गया.
1: और ये देखिए किस तरह से घसीट घसीट कर इन युवाओं को यहाँ से हटाया जा रहा है.
2: अरे सर मीडिया से हैं, वहाँ पे हमारी गाड़ी है, आप हमें क्यों रोक रहे हैं सर, मीडिया से हैं.
1: तो ये देखिए यहाँ से लोगों को फिर से एक बार उठाकर यहाँ से फोर्सिबली इविक्ट किया जा रहा है. हम इस वक्त आउटर सर्कल के पास ही हैं, कुछ लोग यहाँ आकर एक सिट इन प्रोटेस्ट में बैठ गए हैं. एकदम अफरा तफरी का माहौल है कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल के बिल्कुल करीब. कम से कम 30-40 युवा प्रोटेस्टर्स यहां आकर सड़क पर बैठ गए हैं और नारे लगा रहे हैं वोट चोरी के खिलाफ. बहुत से प्रोटेस्टर्स को सामने खड़ी इस बस में भर दिया गया है, इसमें लड़कियां भी नजर आ रही हैं.
3: हम कॉमन स्टूडेंट्स हैं, हम एसएफआई की तरफ से आज के प्रोटेस्ट में ज्वाइन किए थे सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ. हमें इतना ब्रूटली मैनहैंडल किया. लुक एट द ब्रूजेस दैट दे हैव गिवन ऑन आवर बॉडीज. दे आर ट्रीटिंग अस वर्स देन एनिमल्स फॉर आस्किंग फॉर आवर राइट्स, फॉर आस्किंग फॉर आवर वोटिंग. नाउ आई एम इन योर वोटिंग लिस्ट. लुक एट व्हाट दे आर डूइंग टू आवर फ्लैग. लुक एट इट. दिस कैन यू आर अ फॉर. इतनी चोट आ रही है बस में डालते वक्त. ये लोग इतने बर्बरता कर रहे हैं बच्चों के साथ. हमारे दोस्त हमारे साथी उनको सारी चोट लगी है, फिर भी हम बोल रहे हैं, फिर भी ये लोग इतने बर्बरता कर बस में घसीटते हुए ये लोग डाल रहे हैं.
1: देखिए यहाँ पर फिर एक प्रदर्शनकारी को किस तरह से 6-7 रैपिड एक्शन फोर्स के जवान किस तरह से इन्हें यहाँ से उठा के ले जाया जा रहा है. पिछले कई दिनों से जब जब दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं, पुलिस ब्रुटैलिटी की बात हो रही है, और इन्हीं सब विजुअल्स को देखते हुए बार बार ये सवाल उठ रहा है कि क्या प्रदर्शन कर रहे युवाओं को हटाने के जो टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के द्वारा या रैपिड एक्शन फोर्स के द्वारा, क्या ये टैक्टिक्स सही है.
0: तो आपने देखा कि किस तरह से दिल्ली पुलिस के लोगों ने, उनके पुलिसकर्मियों ने छात्र जो थे, जो प्रदर्शनकर्ता थे, उनको वहां से हटाया गया. इसी बीच जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेहा वोहरा उन्होंने एक बार फिर से आज जिसको कहते हैं कि प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, और इन्हें इस तरह से इन दृश्यों के साथ एक बार फिर से डिटेन किया गया.
1: So, इस वक्त ऐसा नेता नेहा बोरा यहां पर कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल में पहुंची थी, बिल्कुल संसद मार्ग का रास्ता जहां से शुरू होता है वहां. लेकिन यहां पे एक बड़ी पुलिस मौजूदगी ने इन लोगों को रोक लिया है, और ये प्रोटेस्टर्स अभी भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. पूरा एक भीड़ है. नेहा बोरा इस वक्त यहां पहुंची थी और प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पूरा जो ग्रुप था उसे पुलिस की ये जो फोर्स है ये लोग आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं.
0: तो इस तरह के तमाम वीडियोस हमने देखे जिसमें कि जो छात्र थे यानी कि जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको किस तरह से पुलिस ने हटाया, उनके तरीके पर बात हो रही है और उस पर चर्चा हो रही है. और मेरे साथ इस समय स्टूडियो मौजूद है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई कर चुके वरिष्ठ वकील डॉक्टर सूरज सिंह जी, स्वागत है आपका. आपने बहुत सारे वीडियोज देखे होंगे जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने उनको डिटेन किया, जिस तरह के जो हमने दृश्य देखे, अपील करते हैं कोई कमेंट.
4: सबसे पहले तो

0: प्रजातंत्र में अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के लिए जगह नहीं है तो वो प्रजातंत्र है ही नहीं। डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फर्क यह होता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पीसफुल तरीके से की जाए और जब तक इमिनेंट डेंजर ना हो, स्टैंडर्ड है चाहे वो अमेरिका का हो चाहे भारतीय संविधान का हो, अनलेस देयर इज ए क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर, क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर टू द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, तब तक किसी को भी आप उसके प्रोटेस्ट करने के अधिकार से रोक नहीं सकते।
1: आज हम इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार जो प्रोटेस्ट का राइट है उस पर अगर पाबंदी लगती है तो उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, सीमा क्या है उसकी।
0: देखिए, इसमें सबसे पहले मूल परिपेक्ष पर आ जाए। भारत का संविधान कुछ फंडामेंटल वैल्यूज, मूलभूत मूल्य जो है उनकी रक्षा करता है। वो मूलभूत मूल्य है डेमोक्रेसी, सॉवरेंटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेटर्निटी आपस में भाईचारा है, इक्वालिटी, जस्टिस। तो ये सारे नियम हमारे मूलभूत नियम हैं और कई बार उनमें टकराव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटेग्रिटी ऑफ नेशन के लिए, सॉवरेंटी ऑफ नेशन के लिए, अगर मान लो कोई व्यक्ति मान लो डेमोन्स्ट्रेशन में जाके पाकिस्तान जिंदाबाद कहता है तो ये प्रोटेस्ट का अधिकार नहीं है। यहां हमारी जो इंटेग्रिटी है या सॉवरेंटी है वो भारी पड़ती है। लेकिन मान लो कोई जाके कहता है कि हम सरकार के कार्यों से सहमत नहीं है तो इससे ना तो कोई देश को खतरा है ना इंटेग्रिटी का सवाल है। तो यहां एक जो संतुलन बनाने की आवश्यकता है, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ए टोटल प्रोहिबिशन, पूर्ण रूप से प्रतिबंध करना, या रेगुलेशन करना, दोनों में फर्क है। फंडामेंटल राइट को आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो लगा सकते हैं क्योंकि कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं होता, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, अनरीजनेबल नहीं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जो हम भूल जाते हैं और बहुत समय से भूले जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी संतुलन का
1: सिद्धांत।
0: जैसे मान लो किसी को जुकाम हो जाए, उसको रोकने के लिए आप नाक नहीं काट सकते, है ना। वो अगर नाक काट रहे हैं तो वो आपने प्रोपोर्शन भूल गए। उसी तरह से अगर छात्र आ रहे हैं, देखिए अगर ये आर्मी रेबेलियन होता, कुछ और होता, तब बात अलग है। आपके अपने छात्र हैं, कुछ बात रखना चाहते हैं, पीसफुल तरीके से रखने का जो है, पहले वो परमिशन मांग रहे हैं, परमिशन आप उन्हें दे नहीं रहे हैं,
1: डिनाई कर दी।
0: उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा कि जरूरी नहीं है जंतर मंतर सेंसिटिव एरिया में ही हो, उनको कोई सूटेबल जगह दे दी जाए जहां सारी अम्यूनिटी हो। तो यहां जो बैलेंस करना होता है, शर्मा जी सबसे बड़ी दिक्कत इंडिया में क्या है, बैलेंस नहीं है। पावर आप किसी को भी दे दीजिए, वो पावर को जिस पर्पज के लिए पावर दी गई है उसकी बजाय पर्सनल पर्पज के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं।
1: शक्ति का संतुलन, सत्ता का संतुलन, इस पर मैं आपसे चर्चा जारी रखूंगा और इसको थोड़ा सा आगे हम और बढ़ाते हैं। तो सबकी नजरें आज सुप्रीम कोर्ट पर भी थी, हालांकि आज संडे है लेकिन कोर्ट ने आज एक खास सुनवाई की और ये सुनवाई प्रदर्शनों को देखते हुए, जो मेट्रो स्टेशन बंद किए गए थे, 45 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए थे और जो रेल, जिस तरह से रेल सेवाओं को निरस्त किया गया था, उसको लेकर सरकार के फैसले के लिए के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी। तो कोर्ट ने कहा कि मेट्रो और जो रेल है वो सामान्य रूप से चले जब तक कि कानून के तहत इन्हें रोकना जरूरी ना हो और कानून के तहत इंटरनेट सर्विसेज बाधित नहीं की जाएंगी और धारा 163 लागू होने वाले क्षेत्रों के बाहर लोगों को एकत्र होने का अधिकार होगा और किसी को भी हिरासत में लेने के लिए कानून की ओर से जो निर्धारित प्रक्रिया है उसका पालन जरूरी करना होगा। और कोर्ट ने जो बैरिकेड लगाने की व्यवस्था थी उसकी समीक्षा की बात कही और कहा कि अदालत तक अगर कोई पहुंचना चाहता है तो उसे रोका नहीं जाना चाहिए। सूरज जी, ये एक अंतरिम आदेश है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डेफिनेशंस बताई हैं और कहा है कि मतलब मोटे तौर पर अगर मैं एक सामान्य आम नागरिक हूं और मैं इसे समझना चाहूं कि मेरी आजादी वहां तक है जहां तक आपकी आजादी शुरू नहीं होती।
0: जी
1: ठीक है, आप संतुलन की बात कर रहे हैं। अब संतुलन करते करते तो भाई एक चीज आगे जाती है, एक चीज पीछे चली जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश दिया,
0: सबसे बड़ा और आज ही नहीं, कुछ अपवादों को छोड़ के पिछले 70 सालों में जो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कमियां की है वो ये कि एक फंडामेंटल प्रिंसिपल अभी नहीं समझ पाए। फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि फंडामेंटल राइट और लॉ एंड ऑर्डर

0: दोनों बराबर के हैं. आप ये नहीं कह सकते कि जिस समय लॉ एंड ऑर्डर का नाम आ गया तो फंडामेंटल राइट को पूरा भूल ही जाओगे. यहां क्या होता है कि एक चीज को पहले फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, लेकिन जब रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर का नाम करके पहले को ऐसे समझते हैं जैसे उसकी कोई वैल्यू नहीं है. यहां जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है,
1: और अदालत यही कह रही है कि ड्यू प्रोसेस का आप इस्तेमाल कीजिए अगर आप किसी को हिरासत में ले रहे हैं.
0: एग्जैक्टली,
1: जो भी
0: ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या है कि एक तरफ व्यक्ति की स्वतंत्रता है, दूसरी तरफ राज्य को कायम रखने के कुछ सिद्धांत है. दोनों में बड़ी संघर्ष होता है और बड़ा इसमें बैलेंस करना इतना आसान नहीं है. तो सिर्फ अब देखिए ये क्या प्रपोर्शन है कि आप 22,000 पुलिस वाले भेज रहे हैं जबकि छात्रों का आंदोलन है, तो एक डिस्प्रोपोर्शनेट वाली बात तो यही हो जाती है. दूसरे ये कि अगर वो जा रहे हैं तो उनको अपनी बात रखने दीजिए, ये ठीक है कि आप तब तक इंतजार नहीं करेंगे जब तक कोई वो तोड़फोड़ ना कर दे. और तीसरे एक चीज और भी ध्यान रखनी पड़ेगी, कल हम जब ये देख रहे थे डेमोन्स्ट्रेशन तो वहां कुछ पोलिटिकल पार्टियां भी अपने लोग भेज रही है. तो दोनों में फर्क है, एक है जेन्युइन प्रोटेस्ट जो आम नागरिक खासतौर से छात्र खासतौर से युवा चाहते हैं, और एक है पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडास. हम क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से प्रभावित नहीं है, हमारी लॉयलिटी भारत के प्रति है, किसी पार्टी के प्रति नहीं. तो भारत की सुरक्षा का भी हमें उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा. इसमें पॉलिटिकल पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए या कोई फॉरेन फंड जो है भारत को तोड़ने के लिए ना इस्तेमाल हो, इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा.
1: जी जी, डॉक्टर सूरज सिंह, मैं यहां पर हमारे जो बीबीसी संवाददाता है दिलनवाज पाशा उनके पास मैं चल रहा हूं. तो दिलनवाज, पूरा दिन आज का गुजर गया और पूरे दिन में कई हमने इस तरह के देखे, नेहा वोरा को किस तरह से डिटेन किया गया. अगर अब मैं कहूं कि समअप हाईलाइट्स ऑफ द डे क्या है?
2: देखिए, सबसे पहले तो जो अभिजीत दीप के सौरभ दास और आशुतोष रांका है उनको जमानत दी गई. दोपहर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी प्रेस क्लब में, और वहां पर कुछ जो है एलिमेंट्स ऐसे घुस आए जो उन तक पहुंचना चाहते थे, तो उनको प्रेस क्लब की छत पे जाना पड़ा. काफी हंगामा हुआ, बाद में वो किसी तरह वहां से निकल पाए. इसके अलावा दिन भर जो है लोगों को डिटेन किया जाता रहा. अभी हम बात करें 7:15 बजे, अब से थोड़ी देर पहले ही लोगों को डिटेन किया गया है राजीव चौक से, और उसमें कई महिलाएं भी हैं जो सवाल उठा रही हैं कि 6 बजे के बाद महिलाओं को क्यों और कैसे डिटेन किया जा रहा है. इसके अलावा नेहा वोरा के आपने फ्लैश प्रोटेस्ट की बात की, मैं वहीं पर मौजूद था, तो नेहा वोरा की तरफ से मैसेज आया कि वो आज के आश्रम मेट्रो स्टेशन पर आएंगी, प्रोटेस्ट करेंगी. हुआ ये कि एक लड़की नेहा वोरा जैसी दिखती हुई आई, उसी तरह चश्मा लगाया हुआ था, पूरा पुलिस प्रशासन और जो जर्नलिस्ट थे वहां सबकी अटेंशन उसकी तरफ हो गई. लेकिन जब उसको डिटेन किया गया, उसने काफी मशक्कत दी, तो पता चला वो कोई और लड़की, और तब तक नेहा वोरा वहां से निकल के अपने साथियों के साथ दौड़ती हुई यहाँ कनॉट प्लेस जो करीब 1 किलोमीटर के आसपास है वहां तक आई नारेबाजी करते हुए. इसके अलावा आज जो यहाँ पे सख्तियां या पाबंदियां हम कहें तरीके से लोगों के मूवमेंट पे, वो थोड़ा कम थी. इंटरनेट जो है ब्लॉक नहीं था. इसके अलावा मेट्रो स्टेशन भी खुले थे, तो कनॉट प्लेस के जो सेंट्रल एरिया है या सेंट्रल दिल्ली के जो एरिया है वहां तक लोग पहुंच पा रहे थे. तो शाम में ठीक ठाक क्राउड हो गया था राजीव चौक के आसपास. एक तरफ जो है प्रोटेस्टर्स थे और दूसरी तरफ अपने आप को जो है राष्ट्रवादी कहने वाले लोग थे, जिनको हमने देखा कि उन्होंने कई लोगों को दौड़ाया भी, कुछ पर मेरी आंखों के सामने जो है उनको हैकल किया गया. इसके अलावा जो यहाँ पे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो खुद को राइट विंग जर्नलिस्ट कह रहे हैं, वो लोगों को हैकल करने की कोशिश कर रहे हैं. तो बहुत कुछ होता, अभी थोड़ी देर पहले जो है फ्लैग मार्च काइंड ऑफ यू नो बहुत बड़ी तादाद में जो है सिक्योरिटी फोर्सेज, जिसमें दिल्ली पुलिस की थी, पैरा मिलिट्री फोर्सेज की थी, वो उन्होंने एक तरीके से वहां पे कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की. लगातार मोहनलाल जो है अलग अलग हिस्सों से प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं,
1: बिल्कुल
2: कॉलेजेस के बच्चे अकेले प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं. तो बहुत सारे लोगों के एक चीज जो इसमें और आज हमने गौर की, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके पास क्लियर गाइडलाइंस या दिशा निर्देश नहीं है. उनको ये नहीं मालूम कि कहाँ पहुंचना है, कैसे प्रोटेस्ट करना है, क्योंकि कोई डेजिग्नेटेड स्पेस नहीं है, डेजिग्नेटेड जगह नहीं है, तो सब इधर उधर भटक रहे हैं. दिन भर भटक के लोग थक के परेशान हो जाते हैं. आप कहीं भी नजर घुमाएंगे आपको कोई बैठा हुआ नजर आएगा जो प्रोटेस्ट में शामिल.
3: ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0300-403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल लादा। लिसनिंग टू कैलगरीज मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो सबरा 94.7 FM।
4: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network. More visibility, more trust, more customers. Let your business be seen, heard, and celebrated. Book your live promotion today with Sabrong Radio. Your brand, on air and on ground. Visit sabrong.ca or call 403-400-0203.
0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca।
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
5: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए। सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर, जहां होता है एनर्जी, एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन। चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग, कोई खास इवेंट, प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन, हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते, हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं। हमारी टीम पहुंचती है आपके पास, लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में। ज्यादा पहचान, ज्यादा भरोसा, ज्यादा ग्राहक। अपने बिजनेस को बनाइए खास, दिखाइए, सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए। आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ, आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी। Monday, Tuesday, Thursday and Friday 7 to 8 p.m. Sunday 1 to 5 p.m.
6: Asia Pacific Immigration Consulting Limited. Student visa, visitor visa, super visa, LMIA applications, family immigration, provincial nominee application, and citizenship application.

0: ਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੈਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੋਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ 403-225-1111 ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸਿਫਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਲਿਮਿਟਡ
1: ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ
0: 403-225-1111
2: ਫਰੋਮ ਦ ਹਾਰਟ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਟੂ ਐਵਰੀ ਕੋਰਨਰ ਵਿਦ ਇਨ ਅ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੀਚ Sabrang Radio is connecting voices, stories, and communities like never before. Whether you're in Calgary, Airdrie, Chestermere, Cochrane, or tuning in from Okotoks, High River, Strathmore, and beyond, we are one sound, one family, one Sabrang. Feel the rhythm, celebrate the culture, and stay connected with voices that matter. More events, more stories, more celebrations are on the way, only on Sabrang Radio. Your voice across every mile. Visit our official website, www.sabrang.ca.
3: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, sabrang.ca ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਥਰਸਡੇ, ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7-8 ਤੇ ਸੰਡੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ 403-400-0203 ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੀਜੀਪੀ 2.0 ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀਜੀਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕੋਂਗਰਸ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਾਲ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ 94.7 ਜੀ।
4: कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं तो लोग ऐसे ही जो है इधर उधर घूम रहे हैं, और जहां उनको दिख जा रहा है कोई माइक के साथ कोई रिपोर्टर दिख जा रहा है तो अपनी बात रख रहे हैं, अपनी बात दर्ज करा रहे हैं। इसके अलावा जो है थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने बताया कि किस अच्छे तरीके से उन्होंने हिरासत के दौरान अभिजीत दिखते उनके साथ जो दूसरे लोग थे उनको ट्रीट किया। तो आज अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्ट का दूसरा दिन था, एक मैसेजिंग की या उसकी कमी हमको जो है ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से नजर आई। एक जगह नेहा बोरा ने फ्लैश प्रोटेस्ट किया, एक दूसरी जगह एनएसयूआई ने फ्लैश प्रोटेस्ट किया, सीजेपी के कुछ वर्कर्स ने एक दो जगह इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, मैंने अपनी आंखों से देखा। कम से कम 8-10 बसों में उनको भर भर के जो है जैसे ही वो लोग दिखाई दिए उन सबको डिटेन कर लिया गया। इसके अलावा लेफ्ट विंग के एक्टिविस्टों के कई के मेरे फोन में मैसेजेस आए हुए हैं पिछले कुछ घंटों के दौरान, उन्होंने भी जो प्रेस रिलीज है वो जारी की है। उनका उन्होंने आरोप लगाया है कि हिरासत में लिए जाने के दौरान उनके साथ में मारपीट हुई है, तो इस पर दिल्ली पुलिस का भी हमें कोई जवाब नहीं मिला है जो सेंट्रल।
5: जी दिलवाज, जी दिलवाज, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन जिस हिरासत की हम बात कर रहे हैं और जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, तो कल जो है तीन सीजेपी के जो लोग हैं, आशुतोष रंका हैं, उनको हिरासत में लिया गया था, और इनको प्लेन में ही हिरासत में लिया गया था। अभिजीत दीपके को हिरासत में लिया गया था, सौरभ दास को हिरासत में लिया गया था प्लेन से ही। आज उन्हें मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें कुछ बॉन्ड भरवाया गया और कुछ शर्तों के साथ रिहा कर दिया गया। तो जो सीजेपी की लीगल हेड है रत्ना सिंह, उनके मुताबिक उन्हें इस शर्त पर रिहा किया गया कि वो एक साल तक शांति भंग नहीं करेंगे। डॉक्टर सूरज सिंह, मैं आपके पास आ गया, सबसे पहले तो यह बताइए कि हिरासत में और गिरफ्तारी में फर्क क्या है? इन्हें डिटेन किया गया था या
6: हिरासत को अंग्रेजी में बोलते हैं कन्फाइनमेंट, और अरेस्ट एक टेक्निकल वर्ड है। तो इसमें फर्क यह है कि सपोज करो किसी को पुलिस में 2 घंटे के लिए इंक्वायरी के लिए बुलाया गया तो उसको हम हिरासत कह सकते हैं, लेकिन अरेस्ट नहीं। लेकिन अगर 24 आवर्स से ज्यादा अगर आप रखते हैं तो उस समय संविधान ये कहता है कि आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही पड़ेगा।
5: तो इस मामले में भी यही हुआ कि आशुतोष रंका, सौरभ दास और इनको भाई मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया।
6: इसको सिर्फ हिरासत नहीं कह सकते,
5: हिरासत नहीं कह सकते, इनको जो है हमें गिरफ्तारी मानी जाए। अच्छा, इसके बाद उनको 51,000 रूपये की मुचलके पर सशर्त जमानत दी,
6: जिसको बेल बॉन्ड बोलते हैं,
5: जिसको बेल बॉन्ड देते हैं। अब उसमें कंडीशन है कि साल भर तक आप ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं।

0: तो भाई वो लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वो अगर साल भर तक उन्होंने लिख के दिया है, इसका मतलब क्या है?
1: देखिए, इस तरह की अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आप फंडामेंटल राइट पर नहीं लगा सकते। वो ये तो कह सकते हैं कि साल भर तक आप कोई भी प्रोटेस्ट ऐसा जिसमें कोई वायलेंस इन्वॉल्व हो या लोगों को भड़काना इन्वॉल्व हो उसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन ये कहना कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं करेंगे तो ये तो आजादी का हनन हो गया, क्योंकि अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बेल के लिए भी नहीं लगा सकते। सपोज करो किसी गरीब आदमी को कहें कि तुम 50 लाख की बेल दो तो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहलाएगी, तो उसको भी हम कहेंगे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को नहीं फॉलो किया गया। तो अब और जो इनको अरेस्ट किया गया था एरोप्लेन में, उसको हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। और संविधान के अनुसार ये संविधान में ये प्रोविजन है 1950 से, ए के गोपालन का सुप्रीम कोर्ट का बड़ा प्रोमिनेंट केस है। अगर आप ये लगे आने से कोई क्राइम मिट कर सकते हैं, किया नहीं अभी,
0: कर सकते हैं, आशंका
1: की संभावना है, आशंका है, उस स्थिति में उनको प्रिवेंटिवली डिटेन किया जा सकता है। और उसके कुछ नियम है, एक नियम यही है कि 24 आवर्स में
0: मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना होगा।
1: तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन थी।
0: देखिए, बहुत सारे जो केसेस हैं, एक हिम्मतलाल शाह बनाम कमिश्नर ऑफ पुलिस 1973 का केस है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार सार्वजनिक सभाओं को नियंत्रित कर सकती है लेकिन उस पर मनमाना प्रतिबंध नहीं लगा सकती, शांतिपूर्ण सभा करना लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अधिकार है। इसी तरह से रामलीला मैदान के घटनाक्रम में 2012 में अदालत ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकार को मौलिक अधिकारों का हिस्सा माना और पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए बल प्रयोग करते समय कानून और मौलिक अधिकारों का पालन करना जरूरी है। इसके अलावा अमित सहानी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस जो 2020 का केस है शाहीनबाग मामले में, इसमें अदालत ने कहा कि सार्वजनिक सड़कों पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता और विरोध प्रदर्शन के अधिकार के साथ दूसरों के आवागमन के अधिकारों का भी सम्मान होना चाहिए। तो बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे मामले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट की साफ साफ गाइडलाइंस है कि आपका राइट शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का है।
1: पीसफुल प्रोटेस्ट इन ए डेमोक्रेसी इज ए फंडामेंटल राइट एंड इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। उसके बिना भारतीय संविधान की कोई वैल्यू ही नहीं है।
0: लेकिन जब आप लिमिट लगाने की बात करते हैं तो इसी लिमिट के चक्कर में आपका मूल अधिकार जो है वो तो किनारे दब गया।
1: देखिए, ऐसा है, एक फंडामेंटल चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए कि हम कितना भी कहें हमारी जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स इंडिया में है वो अभी तक वही इंपीरियल सिस्टम की है। जैसे पुलिस की कल्चर है वो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे, अब जैसे आप देख रहे थे वहां शांतिपूर्ण तरीके से वो देख नहीं रहे थे कि क्या हो रहा है, वो इस भागने की जल्दी में थे कि कोई भी आए और हम रुके
0: उनको
1: झटका दे और अमानवीय तरीके से पकड़े। वरना जो है यही चीज अगर अमेरिका में होती है, एक्सक्यूज मी सर, सिंस यू आर क्रॉसिंग द ब्रॉड लाइन सो दैट्स वाई प्लीज स्टॉप, नहीं वो करें तब उसको बल का प्रयोग होता है। तो एक तो पुलिस की हमारी कल्चर ही जो है या तो चमचागिरी की कल्चर है वीआईपीज की, या छोटे आदमी को पीटने की कल्चर है। लॉ एंड ऑर्डर कैसे होता है, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन को कैसे डील किया जाता है, वो कल्चर है ही नहीं, ट्रेनिंग ही नहीं है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है।
0: वाह जी, सूरज सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच प्रदर्शन के दौरान बहुत सारी ऐसे हमने वीडियो देखे जिसमें कि कुछ हिंदू प्रदर्शनकारी भी नजर आए और उनकी कुछ प्रोटेस्ट कर रहे थे उनसे झड़पें भी हुई। जो सीजेपी की जो लीगल हेड हैं रत्ना सिंह, उन्होंने भी इस बात को बताया और पूछा कि भाई इस तरह से क्यों वो आए थे। शुभांगी आप मेरे साथ हैं, शुभांगी आपने इस स्टोरी को कवर किया है, मुझे बताएं कि ये पूरा मामला क्या था।
2: तो देखिए, कई सारे वीडियोज इस समय सोशल मीडिया पे वायरल हैं जहां पे प्रदर्शनकारी आते हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पे आए हुए प्रोटेस्टर्स हैं उनका विरोध करने। अब इसमें से एक वीडियो कल काफी वायरल हुआ जिसमें तीन आदमी या चार आदमी दिखते हैं दो लोगों को काफी बर्बरता से मारते हुए, खासकर कि उसमें एक महिला का वीडियो आता है जिन्होंने काले कपड़े पहन रखे हैं और उनको जमीन पर लटा के मारा जाता है। इसकी कल काफी आलोचना हुई, काफी कांग्रेस के पेजेस ने, दूसरी पार्टियों के पेजेस ने इसको वाइडली शेयर किया और पूछा कि जब पुलिस प्रदर्शनकारियों को इतनी स्ट्रिक्टली डिटेन

0: ट्रेन कर रही है बसों में भर रही है इन लोगों के साथ उस तरीका का व्यवहार क्यों नहीं हुआ हम वीडियो में पुलिस वालों को भी देखते हैं जो कि मौके पर मौजूद हैं लेकिन जो लोग इस तरीके की मारपिटाई कर रहे हैं प्रोटेस्टर्स के साथ उनको डिटेन क्यों नहीं किया जा रहा
1: लेकिन इस मामले में हुआ क्या मतलब आज की स्थिति क्या है
0: आज इसके ऊपर कमला मार्केट पुलिस थाने में FIR दर्ज हो गई है चार व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी हुई है जिनका नाम है रमन सैनी विवेकानंद अलायस विवेक कपिल कुमार और रविंदर सिंह अलायस गोविंद हिंदू इन चारों की आज गिरफ्तारी हुई है और चारों ऐसा मालूम पड़ रहा है कि हिंदू रक्षा दल के मेंबर्स हैं हिंदू रक्षा दल के जो पिंकी भैया हैं उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इनके सपोर्ट में
1: आपकी इस सिलसिले में पुलिस से भी बात हुई
0: जी पुलिस से मेरी बात हुई मैंने उनसे ये भी पूछा कि वीडियो में जिसकी जिसके साथ असॉल्ट हो रहा है वो बच्चा भी लग रहा है जो उसमें एक पत्रकार हैं जो बार बार बोल रही हैं कि छोटा बच्चा है जिसको मारा है तो मैंने पुलिस से पूछा कि क्या इसमें पॉक्सो के सेक्शंस ऐड होंगे क्या ये बच्चा था जिसे इतनी बुरी तरीके से मारा गया तो पुलिस ने कहा कि अभी उनकी तहकीकात जारी है और अगर ऐसा बाहर निकल के आता है तो वो अलग अलग सेक्शंस भी ऐड कर देंगे हमने ये भी पूछा कि एक अकेला वीडियो नहीं है और भी कई वीडियो वायरल हैं जिसमें ये दिख रहा है कि हिंदू संगठन के लोग खड़े हैं और लोगों को हैकल कर रहे हैं उन्हें मार रहे हैं आप उनका क्या करेंगे तो पुलिस की तरफ से यही संदेश आया कि वो अलग अलग वीडियोज की इस समय तफ्तीश कर रहे हैं और आगे भी FIR दर्ज होंगी आज PTI ने रिपोर्ट किया कि 20 FIR दर्ज कल के बाद हुई है
1: और उसमें से एक FIR ये भी
0: उसमें से एक ये FIR है बाकी क्या ऐसे गुटों के पीछे हुई है इसकी अभी जानकारी नहीं है
1: आपने ये जो जिन पर आरोप लगे हैं शायद इनसे भी बात करने की कोशिश की
0: जी उन लोगों के नंबर बंद थे जो चार लोग हैं जिनके ऊपर आरोप है लेकिन मेरी पिंकी भैया से बात हुई
1: उन्होंने क्या कहा
0: वो सोशल मीडिया पे तो आगे बढ़ के बोल रहे हैं कि ये मेरे लोग हैं और हम सनातन की रक्षा करेंगे लेकिन मुझसे बात करते वक्त उन्होंने कहा कि हम नहीं बता सकते हैं कि क्या ये हमारे रक्षा दल के लोग हैं कि नहीं
1: शुभांगी यहाँ पर हम आपको वो क्लिप सुनाते हैं जो कि रत्ना सिंह की है और उन्होंने बताया कि किस तरह से इस घटना का भी जिक्र किया उन्होंने क्या कहा ये सुनिए
2: तो जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने कल काम करा है और पूरे टाइम ये बोला है कि हमें ऊपर से ऑर्डर आए हैं मैं बोलना चाहती हूँ आज ये जो सारे ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं और जो ये ऊपर से ऑर्डर्स दे रहे हैं वही आके हमें बताएं कि ऐसे ऑर्डर्स उन्हें देने क्यों पड़ रहे हैं क्या वो इतने डर गए हैं कि इस देश के सिटीजन साथ में आकर प्रोटेस्ट ना कर सके जो उनका संवैधानिक अधिकार है राइट टू प्रोटेस्ट राइट टू असेंबल राइट टू मूव फ्रीली आप उन सब पे आकर बाधा डाल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं उसी दौरान वहां पे वीडियोस आ रही थी कि ऐसे राइट विंग के जो गूंज हैं वो सीपी वाले एरिया में पूरा लड़कियों के साथ जिस तरह से व्यवहार कर रहे थे बच्चों के साथ जिस तरह से मारपीट कर रहे थे मैं उन पुलिस कर्मियों को वो दिखा रही थी मैंने कहा आप इनको क्यों नहीं रोक रहे हैं तो मुझे तब बोला जा रहा है कि हमें ऑर्डर आपको रोकने के लिए आए हैं
1: तो हमने रत्ना सिंह को सुना शुभांगी अभी बता रही थी जिस इंसिडेंट का जिक्र कर रही थी और आपने भी जो रत्ना सिंह ये जो फ्रिंज एलिमेंट होते हैं बार बार सरकार या पुलिस हमेशा इस बात को कहती है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे प्रदर्शनों में कोई फ्रिंज एलिमेंट ना आ जाए ये फ्रिंज एलिमेंट कहां से आते हैं
3: देखिए ऐसा है ये अपने आप में जब एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो दूसरे को उस तरह से रोकने का कोई अधिकार नहीं है अगर वो अपनी बात रखना चाहें तो उनको भी इसी तरह से पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार है लेकिन एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को रोके इसी ऐसे स्थिति में अगर पुलिस नहीं रोकेगी जो ग्रुप रोक रहा है प्रोटेस्ट करने वालों को पुलिस के अलावा कोई और कंट्रोल करे ये तो अपने आप में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो गई सही पूछा जाए तो ये पुलिस के फेलियर है ये गवर्नमेंट का पक्षपात है क्योंकि इस तरह से अगर अपनी बात रखना चाहें क्योंकि परमिशन तो सो कॉल्ड ये जो रक्षक आए थे इनको भी नहीं थी तो इसलिए इस तरह की चीज से सिद्ध होता है कि सरकार निष्पक्ष रूप से कानून व्यवस्था को नहीं चला रही है क्योंकि निष्पक्ष रूप से तो ये है कि भाई अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करने आया है और लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉब्लम है तो पुलिस उसको कंट्रोल करेगी उसके लिए समुचित मात्रा में पुलिस थी भी उसके बाद कुछ ऐसे तत्व आ रहे हैं जो उनका विरोध कर

0: हैं, पुलिस को उनको रोकना चाहिए। पुलिस उनको कैसे दूसरों को पीटने का अधिकार दे सकती है? इसका मतलब क्या है कि यहां जो है कानून की व्यवस्था ड्यू प्रोसेस तो फॉलो हो ही नहीं रही है, जिसको हम ड्यू प्रोसेस बोलते हैं। और सही पूछा जाए तो पुलिस अपना कर्तव्य का पालन कर ही नहीं रही है। पुलिस को पक्षपात थोड़े ही होना चाहिए, पुलिस को तो संविधान की रक्षा में लगना चाहिए और संविधान के और डायरेक्शन होनी चाहिए सरकार की तरफ से कि भाई इस तरह से कोई भी डिसरप्टिव तत्व आए, इसका मतलब तो वो आंदोलन को बिगाड़ने वाले हैं, कल अगर वो हिंसा कर दें तो इन पर भी आरोप लगा सकते हैं। तो वो
1: सूरज सिंह जी, मैं यहां पर दिलनवाज पाशा को एक बार शामिल कर रहा हूं। तो दिलनवाज पाशा, आप लगातार इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं और इस दौरान तमाम प्रदर्शनकारियों से भी आपकी मुलाकात हुई, बहुत सारे कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी नजर आते हैं जो इन प्रदर्शनों में हिस्सा ले रहे होते हैं, और मतलब बताएं उनके बारे में, ऐसा अगर कुछ होता है या आपका सामना हुआ हो तो।
2: देखिए आज मोहनलाल, अगर आप आज की बात करें तो कल भी इस तरीके के बहुत सारे एलिमेंट्स थे, लेकिन आज उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। ये लोग प्रोटेस्ट करने नहीं आ रहे हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये हमको एक तरीके से हैरेस करने आ रहे हैं। आज मैंने अपनी आंखों से देखा एक कार जिसमें डंडे थे, इन लोगों ने मेरे वहां पहुंचने से पहले किसी को हैरेस किया, उस पर अटैक भी किया। उसके बाद कई पत्रकारों ने, दिल्ली पुलिस ने उनको पॉइंट आउट किया कि ये लोग हैं, रॉन्ग एलिमेंट हैं, इनको गाड़ी को चेक करिए। पत्रकारों के बार बार कहने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने उस गाड़ी को वहां से सेफली जाने दिया, जबकि पत्रकारों ने उस गाड़ी को रोक और उसको चेक करने की कोशिश की। तो ये सब यहां हो रहा है, मैं ही खड़ा था, कुछ लोगों ने आके मेरे साथ में जो है मुझसे बार बार सवाल करने की कोशिश की, मेरे जर्नलिज्म को लेके, इसको लेके। इन एलिमेंट्स को एक तरह से खुली छूट दे दी गई है, और सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग इस चीज को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। तब से थोड़ी देर पहले लगभग 5:30 बजे के आसपास मैंने अपनी आंखों से देखा, एक युवा प्रोटेस्टर था, वो अपनी बात कर रहा था, कुछ लोग समूह में आए, और शायद मेरे फोन में उसका विजुअल भी होगा क्योंकि मैं वहीं खड़ा था तो मैंने रिकॉर्ड किया होगा, उसको गरेबान से पकड़ के खींचते हुए लेके। तो फिजिकल वायलेंस यहां लोगों के साथ हो रहा है और कुछ लोगों को ऐसा करने की इजाजत दी जा रही है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी से मैंने यही सवाल किया कि सर ये क्या हो रहा है, और वो मुस्कुराते हुए चले गए। तो ये मेरी आंखों के देखे दृश्य हैं, मैं वहां पे मौजूद हूं और ये सब हो रहा है। और सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे जर्नलिस्ट इसको देख रहे हैं, इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर 6 बजे के तक का नियम है, 6 बजे के बाद महिलाओं को डिटेन नहीं किया जा सकता, तो हम देख रहे हैं अपनी आंखों से ऐसा होते हुए। किसी नाबालिग को डिटेन नहीं किया जा सकता, उसको उसके साथ में कंडक्ट की खास शर्तें हैं, तो उनको कार में बिठा के ले जाते हुए, बस में भरते हुए, हम ये सब देख रहे हैं मोहनलाल। तो ये सब यहाँ पे हो रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी हम जब बाद में समीक्षा करेंगे या पीछे लौटकर उन्हें कानून की कसौटी पर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कई चीजें ऐसी हुई हैं कि अगर हम कानून के दायरे में या जो संवैधानिक दायरा है उसमें रहे होते तो शायद ना हुई होती। जी
1: दिलनवाज, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। अब CJP की क्या रणनीति, आगे भविष्य में क्या करने वाली है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन इस बीच दिल्ली पुलिस का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि उन पर सबकी निगाह है कि वो क्या कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। तो जिस तरह से जो कुछ भी दिल्ली पुलिस ने किया, आज वो अपनी सफाई में उतरी और दिल्ली पुलिस ने क्या कहा, ये सुनिए।
3: जब इन्हें पिछली बार परमिशन दी गई थी तब इन्होंने कानून को फॉलो नहीं किया, और इनके द्वारा जुटाई गई भीड़ द्वारा भारी पथराव, आगजनी, हिंसा की गई तथा सरकारी संपत्तियों का भारी नुकसान भी पहुंचाया। निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किए जाने, पूर्व में भी कानूनों व दिशा निर्देशों का अनुपालन न किए जाने के मामलों तथा वर्तमान में सुरक्षा व कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जंतर मंतर पर प्रस्तावित धरना प्रदर्शनी की अनुमति नहीं दी गई थी।
1: तो दिल्ली पुलिस की जो प्रवक्ता है उनको अभी हम सुन रहे थे, और उनका कहना है कि भाई ये डिटेंशन की हमने बात की, कुछ एलिमेंट्स की उन्होंने बात की और कहा कि आशंका थी और पिछली बार कुछ ऐसा देखने को मिला इसलिए हमने उनको परमिशन नहीं दी। ऐसे तो कोई भी प्रदर्शन की अनुमति कभी मिलेगी ही नहीं,
0: निश्चित रूप से, क्योंकि ये अपने आप में Catch-22 है कि परमिशन नहीं देंगे इसलिए तुम्हारा इलीगल है, और क्योंकि तुम्हारा इलीगल है इसलिए अरेस्ट करेंगे। तो ये Catch-22 विशेष साइकिल में से तरीका ये होता है कि भाई हम रेगुलेटेड तरीके से आपको परमिशन देते हैं, इसके लिए थोड़ा सा क्रिएटिव थिंकिंग की आवश्यकता होती है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर जंतर मंतर पे बहुत ज्यादा भीड़ है, कोई और सूटेबल प्लेस जैसे रामलीला मैदान या दूसरा जिसमें सारी सुविधाओं, सारा कंट्रोल हो, एक प्रजातंत्र को चलाने के

0: एक अलग शिक्षा चाहिए, एक अलग कल्चर चाहिए, एक अलग इथोस चाहिए. वो वैल्यूज इंडिया में, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लैंड, जहां से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, रूलिंग पार्टी कभी भी ओपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लिए बिना, ओपोजिशन लीडर को कॉन्फिडेंस में लिए बिना कभी भी कोई मेजर फैसला नहीं लेती है. हमारे यहां ऐसा होता है क्या? तो किस तरह की डेमोक्रेसी है? ठीक इसी तरह से जो एक कल्चर है, और वो कल्चर ये है कि भाई आपको पहले स्वतंत्रता दी जाएगी, लेकिन उसका आप अब्यूज करोगे, दुरुपयोग करोगे तो रोक दिया जाएगा. तो उसका टेस्ट जो है, जो अमेरिका में भी है, इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर टेस्ट, जहां बिल्कुल स्पष्ट, क्लियर और प्रेजेंट और एकदम अभी जाहिर, ये नहीं कि फ्यूचर में होगा. जब तक वो खतरा ना हो तब तक आप किसी की आजादी पर पाबंदी नहीं लगा सकते. हम इंडिया में प्री मेच्योरली पाबंदी लगा देते हैं. तो ये जो है एक डेमोक्रेसी की जो कल्चर है, जो नॉर्म है, उसी के खिलाफ है. अब ये बताइए, लेकिन साथ ही एक मैं सावधानी और कहूंगा, और बहुत जरूरी है, कि छात्र जेन्युइन तरीके से, बोनाफाइड तरीके से अपनी बात रखना चाहे, उनका उनको पूरा अधिकार है. लेकिन साथ ही पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो दक्षिणपंथी हो, वामपंथी हो, कोई और पंथी हो, वो बीच में अपना गेम करना चाहें तो उसको भी परमिट नहीं किया जाएगा. क्योंकि कई बार छात्रों का दुरुपयोग भी होता है, वो नहीं होना चाहिए, किसी के हाथ में नहीं खेलने. साथ ही जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर कोई फॉरेन फंडिंग किसी तरह से उकसा रही है कुछ तत्वों को,
1: पैसा आ रहा है
0: और पैसा आ रहा है और भारत को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, या हमारे जो विरोधी देश हैं वो कुछ नुकसान करना चाह रहे हैं, तो वहां हमें चाहे स्वतंत्रता को थोड़ा कम करना पड़े, लेकिन देश की इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी को बचाना पड़ेगा.
1: इस तरह के मामले, डॉक्टर सूरज जी, इस तरह के मामले जिसमें बहुत ज्यादा डिटेंशंस होती हैं, तो क्या प्रोसेस होता है? मतलब तमाम छात्रों पर मुकदमे दर्ज होते हैं, वो बहुत खराब प्रोसेस है भाई. गिरफ्तार हो गए, अदालत से उनको जमानत मिली, ये प्रक्रिया ही बहुत खराब है.
0: प्रक्रिया जो है, जिस तरह की डेमोक्रेसी कल्चर होनी चाहिए, वो हमारे यहां बहुत समय से नहीं थी. अगर आप आंकड़े ऐतिहासिक रूप से देखें तो भारत में कभी भी 3 लाख से ज्यादा अंग्रेज नहीं आए, जिसमें उनके व्यापारी, उनके पादरी सब शामिल है. और उस समय भी हमारी जनसंख्या 33 करोड़ थी. इसका मतलब 1100 लोगों पे एक सिपाही था, एक अंग्रेज था, जिसमें मर्चेंट भी आ गया. तो इसका मतलब सारी ही उनकी प्रक्रिया, चाहे वो हम लॉर्ड मैकाले को, दूसरे को कहें कि इंडियन पेनल कोड बना दिया, असलियत में वो क्राउड कंट्रोल का रूल था, फ्रीडम का रूल नहीं था. और हमारी जो संविधान है उसमें भी आपको जान के आश्चर्य होगा शर्मा जी, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से 54% प्रोविजन जो के तो लिए गए. इसका मतलब आजादी के बाद भी वो कल्चर जो है, कंट्रोल की कल्चर गई नहीं. तो सबसे बड़ा चैलेंज भारत के लिए यही है कि डेमोक्रेसी.
1: तो अब तो सरकार ने इंडियन पीनल कोड को बदल दिया, बहुत सारे सुझाव शामिल कर लिए गए, नाम बदल दिया गया, अब तो चीजें सुधर गई होंगी ना?
0: बहुत ज्यादा नहीं सुधरी है. दरअसल जो मूल माइंड सेट है वो सुधरा ही नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया है. मूल माइंड सेट ये होता है जो एक प्रजातंत्र में होता है, कि ऑल आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल. वो एक कल्चर होती है. उदाहरण, निक्सन के टाइम में निक्सन ने अपने अटॉर्नी जनरल को कहा, भाई तुम ऐसे ऐसे मेरा कहना मानो. उसने कहा नहीं, गलत है, हम नहीं करेंगे. उसने उसको फायर कर दिया, हटा दिया. दूसरा अटॉर्नी जनरल आया, उसने कहा ऐसे करो. उसने कहा बेशक हमें निकाल दो, हम भी नहीं करेंगे. उसको भी फायर कर दिया. तीसरा आया, उसने भी वही. वो एक कल्चर होती है, दबते नहीं है, सच्चाई के लिए लड़ते हैं. यहां पहले से ही हजारों साल से गुलाम चले आ रहे हैं, फिर अंग्रेजों के टाइम में. तो ऐसे में भारत की स्वतंत्रता को जिम्मेदारी के साथ, और दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता अपने आप में काफी नहीं है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं मीडिया के बहुत फेवर में हूं, लेकिन मैंने
1: इसमें तो तमाम जर्नलिस्ट को भी लपेटा गया. हाँ, इसमें तो तमाम इस तरह
0: को भी डिटेल किया गया. फ्रीडम, रेस्पॉन्सिबल फ्रीडम, तो वो दोनों में बैलेंस करना, कि फ्रीडम भी हो लेकिन फ्रीडम वाला अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी का भी परिचय दे.
1: ये दोनों बहुत जरूरी है.
0: मर्यादा भी रखे,
1: मर्यादा भी रखे.
0: देखो, प्रोटेस्ट करना फंडामेंटल राइट है, लेकिन प्रोटेस्ट की मर्यादा को भी ध्यान में रखे,
1: वो भी बहुत जरूरी है.
0: हाँ, तो
1: दिलनवाज पाशा, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं. दिलनवाज अब मुझे ये बताइए कि कल

0: तीसरा दिन होगा अब क्या योजना है ये प्रोटेस्ट आगे चलेंगे या कैसे आगे कहां जाएंगे
1: देखिए मोहनलाल एक तरफ तो सीजेपी का प्रोटेस्ट है लेफ्ट विंग स्टूडेंट्स यूनियन का प्रोटेस्ट और कई सारे जो सिटीजन ग्रुप हैं वो इसमें आ गए हैं दूसरी तरफ कल कांग्रेस ने एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट का जो है ऐलान किया है ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के साथ ही और जैसा हमें पता चल पा रहा है कांग्रेस बहुत बड़े पैमाने पर अपने वर्कर्स को कार्यकर्ताओं को जो है इसके लिए मोबिलाइज कर रही है देश के अलग अलग हिस्सों से जो है कार्यकर्ताओं को दिल्ली बुलाया गया है तो कल हमको बड़ा राजनीतिक प्रोटेस्ट भी जो है दिल्ली के सड़कों पर नजर आ सकता है और जैसा बताया जा रहा है अगर वैसा सही है तो दिल्ली की सड़कों पर कल बड़े पैमाने पर आपको जगह जगह फ्लैश प्रोटेस्ट भी दिख सकते हैं क्योंकि कांग्रेस को भी एक ये समझ बन रही है कि एक ये ऐसा मोमेंट है जिसका राजनीतिक फायदा उठाया जा सकता है और लोकतंत्र में राजनीतिक दल जो है फायदा
0: जी कुछ एक गलबात जड़ी है तुसी सुनी ते हाले होर भी गलबात जिहड़ी इहदे नाल रिलेटड जिहड़ी आपां सुनन दी कोशिश करांगे क्योंकि थोड़ी देर तक साडे कोल गैसट भी आ रहे ने उहनां दे नाल भी गल्लां पता करनियां बट अज दा प्रोग्राम जिहड़ा इक छोटी जी ब्रेक लैंदे आ फिर इस तों बाद बाकी दी गल्लबात करदे आ
2: द टाइम इज 2 PM यू आर लिसनिंग टू फेयरचाइल्ड रेडियो CHKF FM 94.7 A multicultural radio station in Calgary.
3: Remember last weekend? For many of us, it sounded like this. Wanna dance?
4: Sure.
3: But for some, it sounded this way.
4: Drinking and driving was the cause of another fatal accident this weekend.
5: Would you step out of the car, please, sir?
3: Hey, summer weekends were made to remember, but not for all the wrong reasons. Please, drink responsibly. A message from the Brewers of Canada.
6: जब भी जरूरत पड़ती है अल्बर्टा वासी एकजुट हो जाते हैं और आगामी जनमत संग्रह बहुत मायने रखता है ये अल्बर्टा वासियों को अपने प्रांत पर अधिक अधिकार दे सकता है हमारे न्यायाधीशों की नियुक्ति ओटावा के बजाय अल्बर्टा द्वारा की जाए और हमें अपनी ऊर्जा आप्रवासन और सामाजिक सेवाओं पर अधिक अधिकार मिले 19 अक्टूबर को एकजुट कनाडा के भीतर एक मजबूत और स्वायत्त अल्बर्टा के लिए अपनी आवाज बुलंद करें वेबसाइट पर जाएं अल्बर्टा फ्रेंडम 2026.ca इस विज्ञापन का भुगतान अल्बर्टा सरकार द्वारा किया गया है
7: जदों तुसी नवा घर बनाउंदे हो तां तुसी उन्हां कम्युनिटी सहूलतां लई उडीक नहीं करना चाहुंदे जो उस थां नूं इक असली गुआंढ वर्गा अहसास दिंदियां ने नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे विच हक्सली एरिया जिथे पहले परिवारां दे आउण तों पहलां ही पार्क अते पैदल चलण वाले रस्ते तैयार ने शॉप्स अते स्कूल नेड़े होण अते शहर दे वख-वख हिस्सियां तक तेज पहुंच दे नाल हक्सली तुहानूं जुड़िया रखदा है बिना जगह कुदरत जां जीवन दी गुणवत्ता दे नाल कोई समझौता कीते अज ही हक्सली दे 12 शोहोम्स वेखो घरां दी कीमत मिड 5 लाख तों शुरू विजिट करो genesisland.com
8: वर्क फर्स्ट अल्बर्टा तुहाडी स्टोरी बदलण विच तुहाडी मदद कर सकता है ए नौकरी लब्भण वालियां नूं सिखलाई ते स्रोतां नाल जोड़दा है तां जो ओ अर्थ भरपूर रोजगार लभ सकण अते रोजगार दातावां नूं योग उम्मीदवार लब्भण च वी मदद कर सकता है ए स्थाई कैरियर लई होर अल्बर्टा वासियां नूं तैयार करदा है अते एम्पलॉयज उहनां हुनरमंद कामियां नूं प्राप्त कर सकते हन जिन्हां दी उहनां नूं लोड़ है वर्क फर्स्ट अल्बर्टा .ca ते जाणो कि तुसीं अपनी कहानी ਮੈਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ
9: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ 94.7 FM ਤੇ ਸੁਣੋ ਹਫਤੇ ਦੇ 20 ਘੰਟੇ ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ radiosursangam.ca ਫੋਨ 403-585-0910 ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ
7: अल्बर्टा विच संगठित अपराध लई कोई थां नहीं असी पुलिस अते होर कानून लागू करन वालियां एजेंसियां दी मदद लई 8 मिलियन डॉलर दा निवेश कर रहे हां तां जो अल्बर्टा दे परिवारां कारोबारां अते भाईचारियां लई खतरा बने गैंग्स फिरौती वसूली अते अपराधिक नेटवर्कां खिलाफ सख्त कारवाई कीती जा सके इह फंड कानून लागू करन वालियां एजेंसियां नूं वधेरे मजबूत निगरानी खुफिया जानकारी डिजिटल फोरेंसिक अते जांच समर्थावां प्रदान करेगा तां जो संगठित ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ
2: The following program speaks to the East Indian community. Uniting the World for your listening.

0: व मजदूरों को नहीं रख सकते।
1: और भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन कमेंट्स पर पलटवार किया और इन्हें अपमानजनक बताया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका का अपना इतिहास कई पीढ़ियों के इमिग्रेंट्स ने मिलकर बनाया है। उनकी मेहनत, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन ने देश की खुशहाली और तरक्की में योगदान दिया है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जिनमें इतिहास की पीड़ादायक और कॉलोनियल विरासत की झलक मिलती है बेहद अपमानजनक है। परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम यानी कि पर्म नाम के इस प्रोग्राम के तहत अमेरिका में मौजूद कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि अमेरिका में स्थायी तौर पर निवास दिलाने के लिए उन्हें स्पॉन्सर कर सकती थी। ये प्रोग्राम कैसे काम करता है बता रही है न्यूयॉर्क से बीबीसी संवाददाता समीरा हुसैन।
2: परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम यानी पर्म के तहत कंपनियां योग्य विदेशी कर्मचारियों को परमानेंट रेजिडेंसी दिलाने के लिए स्पॉन्सर करती हैं। ये H-1B प्रोग्राम से अलग है जिसके तहत स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स को कुछ समय के लिए वर्क वीजा मिलता है। इस फैसले का ऐलान करते हुए उपराष्ट्रपति J.D. वैंस ने माइक्रोसॉफ्ट को इस प्रोग्राम का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल करने वाली कंपनी बताया। इसके जवाब में टेक कंपनी ने कहा कि अमेरिका में उसके ज्यादातर कर्मचारी अमेरिकी नागरिक हैं। ट्रंप प्रशासन का ये कदम असल में उन कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए है जो विदेशी कर्मचारियों को नौकरी देती है और उन्हें अमेरिकी कर्मचारियों के मुकाबले कम वेतन देती है। लेकिन कंपनियों का कहना है कि इस तरह के प्रोग्राम्स को सस्पेंड करने से उनके लिए विदेशी टैलेंट को नौकरी पर रखना मुश्किल हो सकता है।
1: अमेरिका के लेबर डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2024 से 2025 के बीच परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन के लिए टोटल 117,849 आवेदन किए गए थे जिनमें भारतीय आईटी कंपनियों की साझा हिस्सेदारी 1,400 से कम यानी 2% से भी कम रही। ये सबसे लेटेस्ट उपलब्ध आंकड़े हैं। भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनी इंफोसिस लिमिटेड के पास 2022 के बाद से कोई पर्म मामला नहीं है। वहीं अमेरिकी सरकार के फाइनेंशियल ईयर 2025 के पर्म डिस्क्लोजर के डेटा के मुताबिक इस दौरान परमानेंट रेजिडेंसी के संबंध में 523, 513 और 393 मंजूरियां मिली। वहीं इस बीच लंबे समय से माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव रहे सत्य नडेला कल रात व्हाइट हाउस में थे जहां डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें टेक इनोवेशन के लिए मेडल दिया और अगले ही दिन उनकी कंपनी भी पाबंदियों वाली लिस्ट में शामिल थी। यूक्रेन ने राजधानी कीव और आसपास के इलाकों में इमरजेंसी इलेक्ट्रिसिटी कट्स लगाने शुरू कर दिए हैं। रूस लगातार यूक्रेन के शहरों पर हमले कर रहा है। यूक्रेन के अधिकारियों का कहना है कि ज़ाबोरोजिया में रूस के हवाई हमले में एक शख्स की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। ये ताजा हमले ऐसे वक्त हुए जब यूक्रेन के प्रतिनिधि मायामी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिनिधियों स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुश्नर से मिलकर कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता अब्दू जलील अब्दू रासुलोव।
3: यूक्रेन के लिए हालात को और बिगड़ने नहीं दिया जा सकता क्योंकि पहले से ही स्थिति काफी मुश्किल है। बार बार हवाई हमलों के अलर्ट जारी हो रहे हैं। ये याद दिलाता है कि रूस लगभग हर दिन यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बनाकर हवाई हमले कर रहा है। यूक्रेन के लिए इन हमलों को रोकने का एक ही तरीका है, रूस को ये समझाना कि वो ये युद्ध नहीं जीत सकता। इसके लिए यूक्रेन चाहता है कि रूस पर और प्रतिबंध लगाए जाए और यूक्रेन को और हथियार दिए जाए। यूक्रेन ये भी चाहता है कि उसे रूस अंदर तक हमला करने की क्षमता मिले ताकि रूस की युद्ध से जुड़ी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया जा सके, साथ ही उसकी सैन्य ताकत कम की जा सके। इसके बाद ही रूस बातचीत की मेज पर आएगा।
1: रूस के हमले लगातार जारी हैं। इस बीच कड़ाके की सर्दी करीब आ रही है। ऐसे में कीव के कुछ लोगों को लगने लगा है कि अब यहां रहना सुरक्षित नहीं है। देखिए बीबीसी संवाददाता पॉल एडम्स की ये रिपोर्ट।
4: यूक्रेन की राजधानी पर दिन रात भीषण हमले हो रहे हैं। ये सब अगस्त से चल रहा है। यहाँ के लोग खतरे के आदी हो चुके हैं लेकिन लगातार होते हमलों का सिलसिला थका देने वाला है। मारिया अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो यहाँ से जाने की तैयारी कर रही हैं।
5: मैं यूक्रेन में बिल्कुल सेफ महसूस नहीं करती, मैं आराम नहीं कर पाती।
4: मारिया के बच्चे आर्थर और कीरा 2022 में रूस के बड़े हमले के बाद पैदा हुए थे। उन्होंने बस जंग ही देखी है।
5: तब मैंने कहा था कि मैं यूक्रेन छोड़ने वाली आखिरी इंसान होंगी। मैं भला क्यों यहाँ से जाऊँ?
4: लेकिन पिछले एक साल में कीव के लोगों को शहर छोड़ने की कई वजह मिली हैं। पिछली सर्दियां बेरहम थीं। पावर ग्रिड पर हुए रूस के अटैक से न तो लोगों के घरों में हीटिंग हो रही है न ही बिजली है।

0: कि в таких умовах
1: इन हालात में हम नहीं रह सकते, तो तब मैंने सोचा कि मैं ऐसी एक और सर्दी नहीं गुजारने वाली।
0: думати про те, що ще одну таку зиму я переживати не хочу.
2: When did you decide?
3: आपने कब ये सोचा कि आप ये दोबारा नहीं करने वाली?
1: Ever since changed in late अगस्त के आखिर और सितंबर की शुरुआत में, तब सब कुछ बदल गया जब कीव पर हर वक्त हमले शुरू हुए।
3: ओलेना अब बाहर निकल रही हैं, लेकिन उनके लिए समाधान कीव से कुछ ही घंटे की दूरी पर यूक्रेन के दूसरे इलाके हैं। उन्होंने एक घर खरीदा है।
4: मैं एक नॉर्मल जिंदगी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ।
3: इसे मरम्मत की जरूरत है, लेकिन उन्होंने अपनी सर्दियों का ज्यादातर वक्त यहीं बिताने का फैसला किया है। आपके पास एक बड़ा बगीचा है?
4: हाँ।
3: सबसे अहम बात, ये शांत है।
4: मैंने फैसला किया है कि बेहतर ऑप्शन एक छोटा गांव होगा जहाँ कोई फैक्ट्री, गोदाम या रेलवे स्टेशन ना हो, यानी ऐसी कोई भी चीज ना हो जो रूस का निशाना बन सके।
3: सर्वे से पता चला है कि यूक्रेन के शहरों में रहने वाले 40% तक लोग हालात बिगड़ने के कारण वहाँ से जाने के बारे में सोच रहे हैं। ये जानना मुश्किल है कि असल में कितने लोग ऐसा करेंगे। मारिया और उनके बच्चे वियना जाने वाली ट्रेन में सवार हैं। वो मिस्र जा रहे हैं। ये यूरोप से ज्यादा किफायती, गर्म और कीव से ज्यादा सेफ है। लेकिन मारिया को नहीं पता कि सर्दियों के बाद आगे क्या होगा। वो और उनके पति जानते हैं कि उन्हें लंबे वक्त तक दूर रहना पड़ सकता है। शायद बच्चे भी ये बात जानते हैं। बीबीसी संवाददाता पॉल एडम्स की रिपोर्ट।
5: 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों के जवाब में इसराइल की कार्रवाई के 3 साल हो गए हैं। इसराइल की इस कार्रवाई से गजा में रह रहे 20 लाख लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। करीब 1 साल से सीज फायर लागू है, लेकिन गजा का ज्यादातर हिस्सा तबाह हो चुका है। पीस डील पर सहमति नहीं बन पाने की वजह से तबाह हुए गजा को फिर से खड़ा करने का काम थमा हुआ है। पिछले साल अक्टूबर में गजा में इसराइली सेना तथा कथित येलो लाइन तक पीछे हट गई थी। इसके बाद से इसराइल ने इस लाइन को गजा के और अंदर तक बढ़ा दिया। हमास का कहना है कि जब तक इसराइल हर तरह की आक्रामक कार्रवाई बंद नहीं करता, तब तक वो हथियार नहीं छोड़ेगा। इसराइल इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को गजा से रिपोर्ट नहीं करने देता, इसीलिए गजा में रह रहे पत्रकारों की मदद से बीबीसी संवाददाता योगिता लिमाई ने यरूशलम से ये रिपोर्ट तैयार की है। लेकिन इस रिपोर्ट की कुछ तस्वीरें आपको परेशान कर सकती हैं।
1: गजा में हर तरफ तबाही है। ऊपर आसमान में लगातार इसराइली ड्रोन्स की आवाज गूंजती है। पीस डील पर जारी गतिरोध के कारण जमीन पर ऐसे हालात दिखते हैं। हर 5 में से 4 बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है या फिर वो पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं। नई सैटेलाइट तस्वीरें तबाही की हकीकत बयां करती हैं। ये दक्षिण में मौजूद रफा है। इस जंग में शायद सीजफायर का मतलब ही बदल गया है। बड़े पैमाने पर बमबारी तो बंद हो गई है, लेकिन हर दिन हमले अब भी जारी हैं। दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मोहम्मद अल बरादवील अपने छोटे भाई इस्माइल को आखिरी विदाई दे रहे हैं। 14 साल के इस्माइल उन 1400 से ज्यादा लोगों में से हैं जो सीजफायर के शुरू होने के बाद से गजा में मारे गए हैं। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी। इसी दिन गजा के दूसरे हिस्से में 5 बच्चों की माँ फिदा अलतूता की भी मौत हो गई। 2 हफ्ते पहले वो इसी टेंट में अपनी बेटी के बाल संवार रही थी, तभी एक गोली उनके सिर में लगी। फिदा की माँ कहती हैं, वो इस तरफ से अंदर आए थे। फिदा के 13 साल के बेटे इज ने बताया कि उनकी माँ चिल्लाई, नीचे झुको बच्चों, नीचे झुको। वो कहते हैं वो बहुत नरम दिल थी। उन्होंने ऐसा क्या गलत किया था? मेरा छोटा भाई बार बार माँ के बारे में पूछता रहता है। आहिद अपने परिवार को 7 बार दूसरी जगह ले गए, लेकिन उन्हें कभी भी सुरक्षा नहीं मिली।
6: सीज फायर की बातें सब झूठ है, यहाँ हर दिन शूटिंग होती है।
1: फिदा के भाई इब्राहिम वो निशान दिखा रहे हैं जो उनके मुताबिक इसराइली सेना की फायरिंग से बने हैं।
7: ड्रोन, टैंकों और गाड़ियों से गोलीबारी हो रही थी। निशाना निहत्थे आम नागरिक थे।
1: इसराइली सेना ने कहा कि उसके पास ऐसे मामलों के कोई रिकॉर्ड नहीं है। सीजफायर शुरू होने के बाद से उनके कम से कम 7 सैनिकों की मौत हो गई। हमारे पत्रकारों के लिए यहाँ हमास की मौजूदगी को कैमरे में दिखाना बहुत खतरनाक है। जिसके काम से ये सब शुरू हुआ, उस हमास का अब भी गजा के

0: इलाकों पर मजबूत कंट्रोल है जहां इसराइल का कब्जा नहीं है हमास विरोध करने वालों पर कार्रवाई कर रहा है और अब भी नए लड़ाकों की भर्ती कर रहा है सप्लाई लेकर ट्रक गजा पहुंच रहे हैं इसराइल का कहना है कि हर दिन 600 ट्रक आ रहे हैं लेकिन दो साल की जंग में हुई तबाही के बाद गजा को इससे कहीं ज्यादा की जरूरत है
1: This is the road that leads up to the crossing from Israel.
0: ये सड़क इसराइल से गजा की ओर जाती है हमें यहाँ तक ही आने की इजाजत है पिछले तीन साल से इसराइल ने विदेशी पत्रकारों के गजा में जाने पर रोक लगाई हुई है गजा में कौन और क्या जा सकता है और वहाँ से कौन और क्या बाहर आ सकता है इस पर कड़ी निगरानी रखी जाती है इसराइल का कहना है कि ये उनकी पुरानी पॉलिसी है वो नहीं चाहता कि गजा में ऐसी चीजें पहुंचे जिनका इस्तेमाल सैन्य मकसद या हथियार बनाने के लिए किया जा सके इसराइल का कहना है कि वो मेडिकल इक्विपमेंट्स को गजा में आने दे रहा है लेकिन अस्पतालों में जरूरी सेवाएं अब भी बिगड़ी हुई हैं क्योंकि सामान की कमी है ब्रिटिश डॉक्टर आसिया हनान ने ये बताया
2: इस इंक्यूबेटर में दो बच्चे हैं ना इनके बीच कोई रिश्ता है ना ही जुड़वा है ये दो अलग अलग बच्चे हैं लेकिन जगह की कमी के कारण दोनों को एक ही इंक्यूबेटर पर रखना पड़ रहा है कल इनमें से एक बच्चे की हालत काफी बिगड़ गई और उसे इंट्यूबेशन देनी पड़ी हमें इस बच्चे के बगल में दूसरे बच्चे के रहते हुए ही सांस दिलाने की कोशिश करनी पड़ी ये सही नहीं था दोनों बच्चों की देखरेख करना भी मुश्किल है
0: गजा में अब हर तीन में से एक प्रेगनेंसी को हाई रिस्क वाला माना जाता है 26 साल की ईमान अलकादी 9 बार विस्थापित हुई उनके बेटे मोहम्मद का वजन नहीं बढ़ रहा है
3: मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ हर तरफ से आई मुश्किलों ने मुझे मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया है
0: दुनिया के दूसरे हिस्से में बैठे नेताओं ने अरबों डॉलर की लागत से गजा को फिर से ठीक करने का प्लान बनाया है लेकिन गजा के ज्यादातर लोगों के लिए ये सपना अभी बहुत दूर है क्योंकि वो हर दिन बचे रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं बीबीसी संवाददाता योगिता लेमाई की रिपोर्ट
4: और अमेरिका में न्यूरो साइंटिस्ट ने चूहों के दिमाग में ह्यूमन ब्रेन सेल्स डाले हैं इन चूहों में जेनेटिक चेंजेस किए गए हैं और सर्जरी के जरिए उनके दिमाग में बदलाव किया गया है हालांकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की टीम का कहना है कि इस रिसर्च से इंसानों में होने वाली मानसिक बीमारियों को समझने में आसानी होगी लेकिन इसके बाद कई नैतिक सवाल भी उठ रहे हैं देखिए बीबीसी संवाददाता विक्टोरिया गिल की ये रिपोर्ट
2: ये तस्वीरें हैं एक चूहे के दिमाग के अंदर काम कर रहे ह्यूमन ब्रेन सेल्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से ये चमक रहा है जिसमें दिमाग की कोशिकाएं सामान्य रूप से सक्रिय हैं और इनमें मैसेजेस का आदान प्रदान हो रहा है ये एक ऐसी वैज्ञानिक सफलता है जिसने नैतिकता के सवाल को जन्म दिया है ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के लैब में तैयार हुए ऐसे चूहे हैं जिनमें अनुवांशिक रूप से बदलाव हुए हैं और इनके दिमाग में ह्यूमन ब्रेन सेल्स फिट हैं इसके बावजूद ये सामान्य चूहों की तरह ही बर्ताव कर रहे हैं वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे मनुष्य के ब्रेन को सामान्य स्थिति में और जब उसमें कुछ गड़बड़ी चल रही हो दोनों सूरतों में बेहतर तरीके से समझा जा सकता है
5: Understanding brain disorder.
6: मस्तिष्क से जुड़े डिसऑर्डर्स को समझना बहुत मुश्किल है हमें इन बीमारियों के पीछे होने वाली बायोलॉजिकल प्रक्रिया को अच्छे से समझने की जरूरत है ताकि उनका बेहतर इलाज हो सके और ऐसा करने के लिए हमें एक बेहतर रिसर्च की जरूरत है ऐसी रिसर्च केवल जानवरों पर नहीं हो सकती बल्कि इनमें मानव कोशिकाओं को भी शामिल करना होगा ताकि हम उन प्रक्रियाओं को समझ सकें जिनकी वजह से ये बीमारियां इंसानों के दिमाग में होती हैं
2: उम्मीद है कि इस रिसर्च से सेरिब्रल पॉल्जी मिर्गी स्किज़ोफ्रेनिया और ऑटिज्म जैसी स्थितियों के इलाज की खोज तेज हो सकती है लेकिन इस रिसर्च ने कुछ नए नैतिक सवाल भी खड़े किए हैं आखिर किसी जानवर के दिमाग में बदलाव करने का मतलब क्या है और आखिर प्रयोगशालाओं में बनाए गए चूहे दुनिया को कैसे महसूस करते हैं
0: इस स्टडी में ऐसा कोई संकेत नहीं है जिससे ये पता लगे कि ये चूहे इंसानों की तरह ज्यादा सोचने लगे हैं या चूहों की तरह कम लेकिन उम्मीद ये है कि आने वाले वक्त में हम जानवरों की सोचने और समझने की ताकत में इस तरह के बदलाव कर सकें कि वो कुछ हद तक इंसानों की तरह सोचने लगें।
2: वैज्ञानिकों का कहना है कि जिंदा चूहों के ब्रेन में ह्यूमन न्यूरॉन्स काम कर सकें इसको कर दिखाना एक बड़ी तकनीकी सफलता है लेकिन स्क्रीन पर चमकने वाले इन ह्यूमन ब्रेन सेल्स से न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के इलाज तक पहुंचने में भी कई सालों की रिसर्च और एथिकल डिस्कशंस की जरूरत है बीबीसी संवाददाता विक्टोरिया गिल की रिपोर्ट
4: और बीबीसी दुनिया में आज के लिए इतना ही प्रोग्राम पर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं
7: सुरेश सिंह जी कुछ एक गलबात जड़ी तुसी सुनी है कि भी किस तरीके दे नाल चूहे दे दिमाग दे विच भी हुन शैतानी दिमाग नहीं इंसानी दिमाग जड़ा है पाने की कोशिश की गई है

0: ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਸ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदा लिसनिंग टू कैलगरी मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो 94.7
4: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrang Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network. More visibility, more trust, more customers. Let your business be seen, heard, and celebrated. Book your live promotion today with Sabrang Radio. Your brand, on air and on ground. Visit sabrang.ca or call 403-400-0203.
0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ

0: खर्च करने के तरीकों को बदल रही है। इस दहाके की शुरुआत च देश की आबादी हर साल 3% की दर नाल वधी सी, जो कि पिछले 50 सालों की 1.2% वाधा दर नालों काफी ज्यादा सी। इस नाल देश च काम करने वाले मजदूरों ते कामियां की घाट तो पूरी हुई, पर रिहायश अते सरकारी सहूलतों ते बहुत ज्यादा बोझ पै गया। साल 2024 च कैनेडा सरकार ने इमीग्रेशन घटाने का फैसला किया, जिस कारण 2025 च आबादी के वाधे की दर घट के 0.5% रह गई। यह पिछले 150 साल सब तो घट वाधा दर है। रिपोर्ट मुताबक आने वाले साल घट नवे इमीग्रेंट्स कैनेडा आने घट लोग आने नाल घरां दी मंग घटेगी, जिस नाल घरां दीआं कीमतां ते किराया दा दबाव घट सकदा है, पर इस दे नाल ही होर चीजां ते सेवावां दी मंग च वी गिरावट आवेगी। कामियां दी घाट ते घट खरीदारी कारण कैनेडा दी आर्थिकता दी रफ्तार सुस्त हो जाएगी। कैनेडा दे लोकां दी औसत उम्र जो 1971 च 26 साल सी, हुण 2026 च वध के 40 साल तो उपर हो गई है। देश च बजुर्गां दी गिणती वधण नाल बाजार दीआं लोड़ां वी बदल रहीआं ने। रिटायर होण तो बाद लोक ज्यादा घूमना फिरना पसंद करदे ने, जिस नाल हवाई जहाज दीआं टिकटां ते होटलां दी मंग वधेगी। दवाईआं, घरेलू देखभाल दीआं सेवावां ते बजुर्गां लई जरूरी समान की खपत वधेगी। मुफ्त सेहत सेवावां कारण सरकार नूं हस्पतालां ते देखभाल केंद्रां उत्ते ज्यादा पैसा खर्चना पवेगा, जिस लई टैक्स वी वधाउणे पै सकदे ने। बजुर्गां दे रिटायर होण कारण काम करन वाले नौजवानां की कमी हो जाएगी। कई खेतरां च कामियां की भारी घाट हो सकती है, जिस करके कंपनियां नूं चंगे मुलाजमां नूं लभाउण लई ज्यादा तनखाहां देणियां पैणगियां। इस नाल चीजां दीआं कीमतां वध सकदियां ने ते महंगाई वधण दा खतरा बणिआ रहेगा। कैनेडा च चुप
1: सो ये जड़ियाँ फ्यूचर, क्योंकि कैनेडा बैंक ऑफ कैनेडा वालों प्रडिक्ट किया गया इस तरीके के हालात जोड़े बने हैं जी, क्योंकि ऑलरेडी इमीग्रेसन जिदा मैं पहला भी गलबात की भी लोग किसी भी तरीके ने इतने पहुँच के तो अपने आप सैटल करने वास्ते कोशिश करते आए ने, सदियों तो करते आए हैं, तो हूँ भी कर रहे थे। तो पिछले कुछ एक साल पहला ये बिल्कुल टॉप के उत्ते चल रही थी इमीग्रेसन सिस्टम, जिस तरीके लोग आ रहे थे, स्पैशली स्टूडेंट वीज़ा के उत्ते बहुत स्टूडेंट जड़े पहुँचे। तो ओवरऑल हों की है भी जो तीन स्टूडेंट ज़्यादा आते हैं तो नाल दी नाल ही वो सैटल इतने होंगे, तो मिनीम एज जी एवरेज एज जी लोगों की वो बढ़ जाती है, फिर मतलब घट जाती है, तो बजुर्ग जड़े ने फिर घटने शुरू हो जाते हैं। बट हूँ जिमें जिमें यंग स्टूडेंट जड़े ने इतों नहीं पहुँच सकनगे तो उन्हों की गिनती घटेगी, तो डेफिनेटली वो जरा सारिया प्रॉब्लम्स भी आने शुरू हो गए। सीनियरस दिया प्रॉब्लम जड़िया ने वो सब तो व्डिया प्रॉब्लम्स होंदिया ने, बट मैं समझदा कि भी कलिया प्रॉब्लम्स जड़िया जिस तरीके विजुअलाइज की जा रही, तो सीनियरस जड़े ने बड़े स्याने होंगे जा रहे हैं, मतलब स्याने तो पहला भी सके अपनी सेहत को लैके किस तरीके अपना शरीर जोड़ा वधिया तरीके रखन, तो अपने आप का बचाव भी रखन, अपन खाण पीन दीज़ा तो होर ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ। ਬ੍ਰੇਕ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ, ਹਰਮਨ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਿਰਨ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੇ ਫੀਚਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਵਿਕਟਰੀ ਲੈਪ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਣਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए। सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर, जहां होता है एनर्जी एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन। चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग, कोई खास इवेंट, प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन, हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते, हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं। हमारी टीम पहुंचती

0: whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app. Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community. Anytime, anywhere.
1: अल्बर्टा में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जुर्म के लिए कोई जगह नहीं है। हम पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दूसरे इदारों की मदद के लिए 8 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी कर रहे हैं ताकि अल्बर्टा के खानदानों कारोबारों और कम्युनिटीज के लिए खतरा बनने वाले गैंग्स एक्सटॉर्शन और मुजरिम नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। ये फंडिंग कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजीद मजबूत निगरानी खुफिया मालूमात डिजिटल फॉरेंसिक्स और तकनीकियाती फराहम करेंगे ताकि ऑर्गेनाइज्ड मुजरिम ग्रोहों का खात्मा किया जा सके और अल्बर्टा के बाशिंदों को महफूज रखा जा सके। हुकूमत अल्बर्टा की जानिब से एक पैगाम।
2: 94.7 FM रेडियो सुरसंगम हर हफ्ते 20 घंटे सुनो मंडे टू फ्राइडे शाम 4 टू 5 कुलदीप सिंह विचार चर्चा शाम 8 टू 9 जितेंद्र पन्नू रेडियो सुरसंगम .ca फोन 403-585-0910 रेडियो सुरसंगम।
1: जब भी जरूरत पड़ती है अल्बर्टा के बाशिंदे मुत्तहद हो जाते हैं और आने वाला रेफरेंडम बहुत अहमियत रखता है। ये अल्बर्टा के बाशिंदों को अपने सूबे पर ज्यादा अख्तियार दे सकता है। हमारे जजेस की अपॉइंटमेंट ओटावा की बजाय अल्बर्टा करे और हमारे अपने एनर्जी इमिग्रेशन और समाज की खिदमत पर ज्यादा अख्तियार हासिल हो। 19 अक्टूबर को एक मुत्तहद कनाडा के अंदर एक मजबूत और खुद मुख्तार अल्बर्टा के लिए अपनी आवाज बुलंद करें। विजिट करें albertareferendum2026.ca। इस इश्तिहार की अदायगी गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा की जानिब से की गई।
3: दोस्तों डैन सिद्धू लाइव इन लोक साथ तुसी हर एतवार 5 बजे तो लेकर 7 बजे तक सुन सकते हो। समाजिक आर्थिक ते राजनीतिक पक्ष दे मसले मिंटू गुरे सरिया तो पंजाब ते भारत दीआं खबरां। स्टूडियो दा नंबर 4-7-717-1947।
4: The following program speaks to the East Indian community. Uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.
5: ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਬਰਨ ਰੇਡੀਓ 94.7 ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਗੈਸਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਸ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890।

0: 0 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक,
1: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
2: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए। सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर, जहां होता है एनर्जी, एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन। चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग, कोई खास इवेंट, प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन, हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते, हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं। हमारी टीम पहुंचती है आपके पास, लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में। ज्यादा पहचान, ज्यादा भरोसा, ज्यादा ग्राहक। अपने बिजनेस को बनाइए खास, दिखाइए, सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए। आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ, आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे 7 to 8 PM, संडे 1 to 5 PM।
3: एशिया पैसिफिक इमिग्रेशन कंसल्टिंग लिमिटेड, स्टूडेंट वीजा, विस्टर वीजा, सुपर वीजा, LMIA applications, फैमिली इमिग्रेशन, प्रोविंशियल नॉमिनी एप्लीकेशन, सिटीजनशिप एप्लीकेशन विच लंबा तजर्बा ते महारत रखता है। तो हॉडी सहूलत लई मैं मनिंदर सिंह ढिल्लों अते इंद्रजोत कौर ढिल्लों इको छत हेठ इमिग्रेशन अते इंश्योरेंस दी सेवावां प्रदान करते हैं। सानू संपर्क करने लई 403-225-1111। मनिंदर सिंह ढिल्लों, एशिया पैसिफिक इमिग्रेशन कंसल्टिंग लिमिटेड,
4: रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, 403-225-1111।
2: From the heart of Calgary to every corner within a 250-kilometer reach, Sabrang Radio is connecting voices, stories, and communities like never before. Whether you're in Calgary, Airdrie, Chestermere, Cochrane, or tuning in from Okotoks, High River, Strathmore, and beyond, we are one sound, one family, one Sabrang. Feel the rhythm, celebrate the culture, and stay connected with voices that matter. More events, more stories, more celebrations are on the way, only on Sabrang Radio, your voice across every mile. Visit our official website, www.sabrang.ca.
5: अपने परिवार लई फैमिली डॉक्टर सिक्योर करो।
6: कॉल करो 587-360-6890। लाइफ लाइन मेडिकल क्लिनिक, वॉक इन सवेरे 9 बजे तो शाम 6 बजे तक।
5: सानू मिलो किंग्स व्यू बुलेवर्ड ते, या कॉल करो 587-360-6890।
6: थोड़े परिवार की सेहत साड़ी जिम्मेदारी।

0: ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0200-3400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890-687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदा लिसनिंग टू कंट्रीज मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो सबराम 94.7 FM
4: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd,

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0300-403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदा लिसनिंग टू कैलगरीज मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो सबरंग 94.7 FM।
4: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network. More visibility, more trust, more customers. Let your business be seen, heard, and celebrated. Book your live promotion today with Sabrong Radio. Your brand, on air and on ground. Visit sabrong.ca or call 403-400-0203.

0: अल्बर्टा में संगठित अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। हम पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता के लिए $8 मिलियन का निवेश कर रहे हैं ताकि अल्बर्टा के परिवारों, व्यवसायों और समुदायों के लिए खतरा बने गैंग्स, एक्सटॉर्शन और आपराधिक नेटवर्कों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। यह धन कानून परिवर्तन एजेंसियों को अधिक मजबूत निगरानी, खुफिया जानकारी, डिजिटल फोरेंसिक और जांच क्षमताएं प्रदान करेगा ताकि संगठित आपराधिक गिरोहों को खत्म किया जा सके और अल्बर्टा वासियों को सुरक्षित रखा जा सके। अल्बर्टा सरकार की ओर से एक संदेश।
1: पंजाब तो प्रसिद्ध पत्रकार जितेंद्र पन्नू जी नू सोमवार तो शुक्रवार रेडियो सुरसंगम 94.7 FM ते सुनो। हफ्ते दे वी घंटे रेडियो सुरसंगम, रेडियो सुरसंगम .ca, फोन 403-585-0910। रेडियो सुरसंगम।
2: वर्क फर्स्ट अल्बर्टा आपकी कहानी को तब्दील करने में आपकी मदद कर सकता है या मुलाजमत के मुतलाशियों को तरबियत और वसीले से जोड़ता है ताकि वह बामाने रोजगार तलाश कर सकें और एम्प्लॉयर्स को अहल उम्मीदवारों की तलाश में भी मदद कर सकता है या मुस्तहकम कैरियर्स के लिए मजीद अल्बर्टन तैयार करेगा और अजराओं को हुनरमंद कारकुनों को तलाश करने में मदद करेगा जिनकी उन्हें जरूरत है। वर्क फर्स्ट अल्बर्टा पर जानें कि आप अपनी कहानी कैसे बदल सकते हैं। हुकूमत अल्बर्टा की तरफ से एक पैगाम।
3: कैलगरीज ओल्डेस्ट, बिगेस्ट एंड ओनली साउथ एशियन रेडियो स्टेशन सबरंग रेडियो 94.7 FM।
4: मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे 7 to 8 PM, संडेज 1 to 5 PM.
3: Visit sabrang.ca.
5: Hey honey, I'm on my way. See you soon.
6: To listen again, press 1.
5: Hey honey, I'm on my way. See you soon.
6: To listen again,
5: Hey honey, I'm on my way. See you soon.
6: To listen
5: Hey honey, I'm on my way. See you soon.
7: When you lose someone, the first thing you forget about them is their voice. With your help, we can prevent more lives from being silenced. Mad Canada. No alcohol, no drugs, no victims. Find out more at mad.ca.
2: अल्बर्टा में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जुर्म के लिए कोई जगह नहीं है। हम पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दूसरे इदारों की मदद के लिए $8 मिलियन की सरमायाकारी कर रहे हैं ताकि अल्बर्टा के खानदानों, कारोबारों और कम्युनिटीज के लिए खतरा बनने वाले गैंग्स, एक्सटॉर्शन और मुजरिम नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। ये फंडिंग कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजीद मजबूत निगरानी, खुफिया मालूमात, डिजिटल फॉरेंसिक्स और तकनीकियाती फराहम करेंगे ताकि ऑर्गेनाइज्ड मुजरिम ग्रोहों का खात्मा किया जा सके और अल्बर्टा के बाशिंदों को महफूज रखा जा सके। हुकूमत अल्बर्टा की जानिब से एक पैगाम।
8: The following program speaks to the East Indian community, uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.
9: ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਸਤੀ ਸੁਸਤੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਵੀਕਐਂਡ ਵੀ ਹੈ, ਮੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲਓਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਜੀਵ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ
10: ਜੈ
9: ਜੀ ਔਰ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
10: ਜੀ ਜੈ ਭਾਈ,

0: जय भाई से हम शुरुआत करते हैं
1: जी सर सारा एक राम राम एंड थैंक यू रजनी जी अपॉर्चुनिटी देने के लिए
0: जी।
1: तो जी जो हमारा फंक्शन जो भी होता है हम एक चीज के ऊपर फोकस करते हैं कि ये फैमिली इवेंट हो तो जी हम बच्चों को भी चाहते हैं कि बच्चे भी साथ में आए इसलिए हमने जो 6 साल से नीचे के बच्चे हैं उनके लिए कोई टिकट नहीं रखी है और जो 6 साल से 12 साल के बच्चे हैं उनके लिए डिस्काउंटेड टिकट रखी है ताकि जी लोगों को ये ना लगे कि जी हम उनको नहीं चाहते कि वो फैमिली के साथ आए हम चाहते हैं कि वो फैमिली के साथ आए हम ये भी चाहते हैं कि जी जो अपने पेरेंट्स हैं उनको भी हम लेके आए क्योंकि हमारे तो जी क्या होता है कि हम जब बाहर जाते हैं तो अपने पेरेंट्स हमारे ना वो उतना एंजॉय नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको अपने एज के लोग कम मिलते हैं तो इसलिए हम चाहते हैं कि जी उनके पास एक अपॉर्चुनिटी रहे कि वो हमारे अपनी एज के लोगों के साथ भी मिल पाए बाकी जी खाने के लिए कोई भी इवेंट जो अपना होता है इंडियंस का या फिर जो एशियंस का है वो खाने के बिना अधूरा है जी
0: बिल्कुल जी
1: तो इसलिए हमने खाने का बहुत अच्छा इंतजाम रखा है वहां पे बहुत सारी चीजें होंगी लेडीज के लिए गोलगप्पे होंगे बच्चों के लिए प्राइज होंगी बाकी सर वेलकम ड्रिंक भी रहेगा तो इसके हिसाब से हम चाहते हैं कि जी सब लोग आए इंजॉय करें ये बहुत अच्छा फैमिली इवेंट होगा हम चाहते हैं कि आप फैमिली के साथ आए और इंजॉय करें ये नहीं रहेगा कि जी सिर्फ वहाँ पे कल्चरल इवेंट है हम चाहते हैं कि सब लोग आए इवेंट को इंजॉय करें और सारी चीजों को इंजॉय अच्छे से कर पाए
0: वेरी गुड
2: एक वैसे ड्यूटी में तारे को एक चीज आपसे ये क्वेश्चन है जो इसमें नॉन वेज और वेज जो है उसके बारे में थोड़ा सा आप अगर क्लियर कर दे तो वो भी अच्छा रहे
1: जी देखिए हरियाणा में वैसे वेज सबसे ज्यादा चलता है
2: हाँ, ये बात
1: ठीक है तो वेज तो ऑप्शन रहने ही रहने उसके साथ में नॉन वेज ऑप्शन भी रहेंगे बट उसके ऊपर हम उतना ज्यादा जोर नहीं देते हैं बट हाँ जो नॉनवेज खाने वाले हैं उनके लिए जो डिशेस हमने रखी हैं वो बहुत अच्छी रखी हैं और वो लोग पक्का उस चीज को एंजॉय करेंगे ये श्योरिटी मैं कर सकता हूँ क्योंकि एक पुराने शेफ होने के बजाय एज ए शेफ मैं कह सकता हूँ कि जो हमने मेन्यू सिलेक्शन किया है उसको हर कोई एंजॉय करेगा बच्चे बड़े और पेरेंट्स
0: वेरी गुड जी बड़ा अच्छा है क्योंकि ये प्रोग्राम खाना पीना नचना गाने के नाल नाल जिन्हों कहते ना भी जे चंगा फूड मिलेगा तो उस तो वधिया तो कोई गल ही नहीं क्योंकि तुसी गारंटी कर दे हो तुसी एक्स शेफ हो और अभी भी आप क्या आजकल नहीं कर रहे हो
1: वो सर कहने की बात है यू कैन गेट ए शेफ आउट ऑफ किचन बट नॉट ए किचन आउट ऑफ ए शेफ
0: बिल्कुल ये तो है ना बड़ा बहुत जबरदस्त है क्यों जी
2: बिल्कुल
0: जी जी जी
3: पहले तो यही उन्होंने समझ हिंदी बोलनी है पंजाबी में
2: आप जो बोलना चाहे बोल सकते हैं
3: जिमे आप सब जी ने कहा कि यू नो एक चीज आप सारे लकी हैं ब्लेस्ड है कि इंडिया मल्टी कल्चरल लैंड है ते इत्थे जे आप आए हैं सारे यू नो इत्थे होमली फीलिंग एक जिहड़ी हैगी है वो सारे मिस भी करते हैं ते अज जदों आपां ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इट्स नॉट एन इवेंट बट ये आप एक एक्सपीरियंस करांगे जिहड़ा सारे आप मिलकर अपने फैमिली दे नाल उत्थे टाइम स्पेंड करांगे ते यही रिक्वेस्ट आयो जरूर सारे अपनी फैमिली दे नाल लोकेशन मैं फिर भी दस दिना लोकेशन हैगी ग्राउंड बैंकेट हॉल च कर रहे हैं ਜਿਹੜੇ ਜੈਕਸਨ ਪੋਰਟ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ 6:00 ਡੋਰ ਦੀ ਬਟ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ 6:30 ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਲਚਰਲ ਇਵੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਆਪਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਟ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਟਰਨ ਗਿਫਟ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਗਿਫਟ ਹੈ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਸਾਰੇ ਆਓ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਲ ਕੇ
0: ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਾਊਨ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੀ
2: ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਅਕਟੂਬਰ 24th ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਸੋ ਲਾਈਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਰਾਊਨ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਰਾਈਟ ਨਾਈਟ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਦੈਟ ਜੈਕਸਨ ਪੋਰਟ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਸੋ ਜੈ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਫੂਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਟੇਬਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਦੀ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਵੋ ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ
0: ਸੋ ਕਰਵਾ ਚੌਥ
2: 29th ਦਾ ਹੈਗਾ 4-5

0: स्पेशल टेबल्स उनकी बुक कर सकते हैं. टिकट्स हमारी हाफ ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी हैं. ठीक है, और बाकी के लिए भी बहुत इंक्वायरीज आ रही हैं, तो अगर आप लोग बुक करना चाहते हैं तो जल्दी करिए. और बच्चों के लिए बिलो 6 इट्स फ्री, और 6 टू 12 के लिए हमने $40 का रखा है.
1: वेरी गुड जी, चलो अच्छे है, प्राइस तो अच्छे रखे आपने, क्योंकि आजकल जितनी महंगाई में मिलता क्या है खाने के लिए, तो अच्छी प्रोग्राम देखना और साथ में अच्छा खाना अच्छी जगह पे, डिफिकल्ट, तो अच्छा प्राइस है.
2: ये सी इन्हा डिपार्टमेंट है फूड का. मैं भाई साहब आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, आपने ड्रिंक के बारे में नहीं बताया. बंदा जो सा रहा है
0: भाई साहब, ड्रिंक
2: कल्चर में तो भाई साहब हर कोई चाहता है कुछ ना खाने पीने.
1: मैंने वो जो बताया ना, वो एक बंदा अपनी वाइफ को बताता है, इस दिन कुछ एक गंदे दोस्त मिलके शराब पीते और जुआ खेलते हैं, ताकि वो अपना रास्ता अपनी वाइफ को पहले बता देता उस दिन क्या क्या होने वाला.
2: तो आपने शराब पिलानी है, जुआ खिलाना है, ये बता.
0: जुए का तो ऑप्शन नहीं है, बट हाँ शराब का ऑप्शन जरूर रहेगा. बाकी हमने वैसे जो दूसरे ड्रिंक्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूसेस, वो चीजें रखी हुई हैं. इवन वेलकम ड्रिंक भी स्पेशल रखा हुआ है, जो आप आएंगे तो वो चीज आपको सरप्राइज है. वेलकम ड्रिंक को मैं अभी रिवील नहीं करूंगा, बट ये हरियाणा से रिलेटेड चीज है, ये कह सकता हूँ मैं.
1: अच्छा जी, वेरी गुड जी. वेलकम
2: ड्रिंक, जलेबी और दूध भी खिलाओगे?
1: हाँ, हरियाणा ने पिछले कुछ समय से पंजाब से ज्यादा लोग जो है हरियाणा में स्पोर्ट्स से आ रहे हैं काफी ज्यादा. अभी तो वैसे पंजाबियों ने फिर से बल्ले बल्ले कराई है, काफी ज्यादा आ गए हैं. गोल्ड मेडल भी हैं, और हमारे कैप्टन पे कैप्टन सारे चले आ रहे थे पिछले
0: सर. देखिए वो चीज तो बात यही है कि बड़ा भाई छोटा भाई है.
1: जी जी बिल्कुल,
0: तो दोनों के अंदर कल्चरल थोड़ा सा डिफरेंस है, बट असलियत में तो सेम वही है.
1: बिल्कुल जी, दोनों ही वही वही, मतलब हरियाणा पंजाब. बट क्या था भी, पंजाब में थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया था, और हरियाणा ने अपने आप को बड़ा अच्छे तरीके से संभाल के रखा था, जिससे हमने देखा भी लोग फिटनेस के मामले में सारी
0: सर फिटनेस के साथ में है. बाकी अगर आप एक चीज के ऊपर अगर ध्यान देंगे, तो जो हरियाणवी गाने वगैरह भी जो आते हैं, उसके अंदर अभी भी एक कल्चरल का आपको हमेशा झलक दिखेगी, एक लिमिटेशन दिखेगी किसी भी चीज के लिए.
1: जी जी
0: ठीक है, तो वो एक चीज है जो बहुत सारे मैंने भी रिसेंटली किसी और वीडियो को देख के नोटिस किया, तो वो चीजें भी देखने की हैं. तो हम यही कहेंगे कि जी देखिए, बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, हमेशा एज ए सोसाइटी हमें देखना है कि जी हमें क्या चीज करनी है. तो हमारे सरपंच साहब जैसे हैं हमारे पास, तो उन्होंने जो कह दिया सर वो हो गया.
1: चलो अच्छी बात है जी, ये अपना काफी अच्छी अच्छी बातें हैं जी.
2: जी बस एक लास्ट मैसेज जरूर अजय जी, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज जिसने अभी तक टिकट बाय नहीं की, प्लीज वो टिकट ले लें, और लिमिटेड टिकट बची हैं हमारे पास. और फिर से एक बहुत बात दोबारा कह रहा हूं कि इसमें हरियाणवी सोसाइटी एंड प्रोटेक्स वाले जो इवेंट कर रहे हैं, उसमें सभी कल्चर के बंदे आ रहे हैं, और आप भी मोस्ट वेलकम हो. कोई भी किसी कल्चर से है, चाहे गुजरात से, हरियाणा से, बिहार से, यूपी से, और सभी, हमारा कल्चर एक जैसा ही है. सो हम उस कल्चर को एक दिवाली को अच्छी सेलिब्रेट करें, और बहुत सारे गिफ्ट भी अपने घर ले जाएं, और खुशियां मनाएं, और आने वाले टाइम में इस इवेंट को एक अच्छा रूप दें.
1: बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा बात आपने बताई है. तो हरियाणवी सोसाइटी ऑफ कैलगरी जी ये प्रोग्राम करने जा रही है 24 अक्टूबर को.
2: 24 अक्टूबर, यस.
1: तो अगला
2: सैटरडे है,
1: दो वीकेंड बचे हैं.
2: हाँ जी हाँ जी,
1: तो 24 को ये प्रोग्राम होने जा रहा है, तो इसमें आपने पार्टिसिपेट करना है. टिकट 60, 40, 12 से 6 to 12, और उसके बाद 0 से 6 जो होता है वो फ्री है बिल्कुल. तो प्रोग्राम इंजॉय करना, हरियाणवी स्टाइल चलाने प्रोग्राम सेलिब्रेट करना जी दिवाली के नाल नाल, बट पंजाबी धूम धमाका भी पेगा उत्थे, जो उन्होंने दस्सिया
2: जिदा
1: भंगड़ा सारा कुछ देखने को मिलेगा. तो उहदे नाल नाल कल्चर एक्टिविटीज तो इलावा खान पीन का वधिया अरेंजमेंट रखे. सो होर जानकारी बस तुसीं,
2: मेरा नाम संजीव नागपाल, और जो अंकुश भाई है मलिक साहब, उनका जो नंबर है 5874369969 5874369969

0: सो ये अंकुश भाई हैं, ये टिकट की टेक केयर कर रहे हैं, तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं उनको भी, और ऑल्सो ऑनलाइन भी जाके आप बुक कर सकते हैं और टिकट मास्टर पे भी जाके बुक कर सकते हैं, और हरियाणवी सोसाइटी ऑफ कैलगरी .com पे हमारी वेबसाइट है, वहां से अगर कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप नहीं लिख पाए या ड्राइव कर रहे हैं तो वहां से भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. सो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या हमारी फेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं, हरियाणवी सोसाइटी ऑफ कैलगरी.
1: जी बिल्कुल जी, तो इंटरव्यू तानू उत्थे भी टैग कीती है, ऑलरेडी तानू मिल सकती है
0: इन्फॉर्मेशन, या फेसबुक पे भी देख सकते हैं.
1: हां जी, तो इसलिए तो थैंक यू वेरी मच.
0: थैंक यू रजेश जी आपका, आप यू नो जब भी हम कहते हैं आप हमको टाइम देते हैं, हम आपके बहुत आभारी हैं सर इस वजह.
1: थैंक यू वेरी मच.
2: थैंक यू
1: वेरी मच. एक छोटी जी ब्रेक लेने जी, ब्रेक तो बाद फिर वापस मिल जाए तो और गल्ला बात इसे तरीके ने जारी रखते हैं. सबरंग रेडियो 94.7
3: टैक्स फोटोज या वीडियोस चेंजेस खुद नहीं कर पांदे ता तुहानू लोड है आई वेब गाय वाले नू 403-400-0203 403-400-0203 ते कॉल करन दी www.iwebguy.ca.
4: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर.
5: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक, जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है.
4: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से.
5: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देती है मुकम्मल केयर.
4: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है.
5: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं.
4: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर, या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890. लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक,
5: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी.
6: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए. सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर, जहां होता है एनर्जी, एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन. चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग, कोई खास इवेंट, प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन, हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते, हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं. हमारी टीम पहुंचती है आपके पास, लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में. ज्यादा पहचान, ज्यादा भरोसा, ज्यादा ग्राहक. अपने बिजनेस को बनाइए खास, दिखाइए, सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए. आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ, आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी. Monday, Tuesday, Thursday and Friday, 7 to 8 p.m. Sunday, 1 to 5 p.m.
7: Asia Pacific Immigration Consulting Limited. Student Visa, Visitor Visa, Super Visa, LMIE Applications, Family Immigration, Provincial Nominee Application, ate Citizenship Application vich lamba tajruba te maharat rakhta hai. Tuhadi sahulat layi, main Maninder Singh Tillo ate Inderjot Kaur Tillo ikko chhat hethe Immigration ate Insurance diyan sewawan pradan karde hain. Sanu sampark karn layi 403-225-1111. Maninder Singh Tillo, Asia Pacific Immigration Consulting Limited.
8: Regulated Canadian Immigration Consultant.
7: 403-225-1111.
6: From the heart of Calgary to every corner within a 250 kilometer reach, Sabrang Radio is connecting voices, stories and communities like never before. Whether you're in Calgary, Airdrie, Chestermere, Cochrane, or tuning in from Okotoks, High River, Strathmore and beyond, we are one sound, one family, one Sabrang. Feel the rhythm, celebrate the culture, and stay connected with voices that matter. More events, more stories, more celebrations are on the way, only on Sabrang Radio, your voice across every mile. Visit our official website, www.sabrang.ca,

0: किडनैप शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये कोई अरेस्ट नहीं है, कोई डिटेंशन नहीं है. डिटेंशन तो तब होता अगर मैं प्रोटेस्ट में जाता, वहां पर प्रोटेस्ट कर रहा हूं तब पुलिस डिटेन कर रही है, वो अलग चीज है. अरेस्ट तब होता अगर कोई पुलिस वाला आता, अपनी वर्दी दिखाता, नेम प्लेट दिखाता, मुझे अरेस्ट करके देता कि ये देखो ये सेक्शन है, ये धाराएं हैं, आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो, मैं खुशी खुशी चल लेता. लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं हुआ. इन लोगों ने लिटरली गुंडे भेजकर मुझे किडनैप किया है, मेरे घर में सोते सोते मुझे. और मेरे घर में उस वक्त कोई नहीं था, मेरे पापा थे, मेरी मम्मी थी और मैं था, बस हम तीन लोग थे घर में. और यहां बाहर बाद में मुझे पता चला कि 50 से ज्यादा लोग खड़े थे, 50 से ज्यादा गुंडे थे इनके. उन्हें पुलिस वाला कह लो, इनकी किसी एजेंसी का कह लो, जो कहना है कह लो. और जब ये अंदर आए, मेरी नींद खुली, तो ऑब्वियसली मैंने पूछा कि कौन हो, क्या हो, कुछ बोलने का मौका नहीं दिया. मुझे सीधा घसीट के लेकर गए. मतलब बिल्कुल इमेजिन करो कि कैसे किसी क्रिमिनल को लेकर जाया जाता है. बेडरूम से घसीट कर लेकर गए मुझे, सीढ़ियों से नीचे लेकर गए. मुझे काफी चोट भी लगी है यहां पे, पूरी बॉडी पे ऐसी ऐसी चोट सा रखी है. और उसके बाद मुझे चप्पल पहनने तक का मौका नहीं दिया गया. ऐसे कैसे उठाकर मुझे जीप में बंद कर दिया इन्होंने, और अपनी जीप में तुरंत भगाकर लेकर गए एक पुलिस स्टेशन, फिर दूसरे पुलिस स्टेशन. और इसी दौरान, इसका कोई वीडियो भी मौजूद नहीं है क्योंकि मतलब फोन मेरे साइड में रखा था, इमीडिएटली इन लोगों ने छीन लिया, मेरे पेरेंट्स का फोन छीन लिया. और उसके बाद जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा हूं, फिर मैंने कहा कि मुझे मेरे लॉयर से मिलने दो. इन्होंने कहा कि कोई लॉयर से नहीं मिलने देंगे, कोई फोन एक्सेस नहीं करने देंगे. तो पूरे का लगभग 22-23 घंटों तक इन्होंने मुझे बिठाकर रखा, मुझे कैद करके रखा उस जगह पर. और कहते हैं कि नहीं नहीं ये कोई अरेस्ट नहीं है, ये कोई डिटेंशन नहीं है, आप चिंता मत करो, छूट जाओगे आप. लेकिन बेसिकली मैं तो किडनैप शब्द का इस्तेमाल करूंगा, इन्होंने किडनैप करके रखा मुझे 22-23 घंटों तक. ना मुझे फोन एक्सेस करने दिया, ना मुझे लॉयर से बात करने दी किसी भी चीज के लिए. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आपने किसी भी डेमोक्रेटिक देश में ऐसा होते हुए सुना है कि एक आम नागरिक जिसने कोई कानून ना तोड़ा हो, जिसने बस सच के लिए आवाज उठाई हो, देश हित के लिए आवाज उठाई हो, एक बेहतर इलेक्शन कमीशन की डिमांड करी हो, उसके घर में घुस के बेडरूम से उसे उठा लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है, उसके माता पिता के साथ मार पिटाई करी जाती है, हाथापाई करी जाती है, और फिर उसे इस तरीके से ले जा दिया जाता है? ये किसी डेमोक्रेटिक देश में ऐसा नहीं होता. नरेंद्र मोदी ने इस देश को डिक्टेटरशिप बना दिया है. ये सीधे तौर पर एक अनऑफिशियल इमरजेंसी है. मैंने बाद में खबर सुनी कि अभिजीत को, सौरभ दास को, आशुतोष को, उन्हें भी एरोप्लेन से ही इसी तरीके से डिटेन कर लिया गया. कितने 7,000 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया, सारे पॉलिटिकल लीडर्स को डिटेन कर लिया गया. ये चीजें इमरजेंसी में होती थी, और ऐसी चीजें नॉर्थ कोरिया में होती हैं, अब हमारे देश में हो रही है. आप लोगों को सोचना होगा दोस्तों, क्या ऐसा देश आप देखना चाहते हो जहां पर आपको अपनी आवाज उठाने का भी मौका ना मिले? जो लोग खुशी जाहिर कर रहे थे, जो लोग मुझे पसंद नहीं करते, वो थोड़ा खुश हो रहे थे कि देखो मेरे साथ ऐसा हो रहा है. डिक्टेटरशिप आ जाती है ना जब, थोड़ा अपने बारे में सोच लो कि अगर ये चीज मेरे साथ हो सकती है ना, तो आपके साथ भी हो सकती है कल को. थोड़ा सोच कर देखो. अभी के लिए मैं ठीक हूं, अच्छी हालत में हूं, लेकिन इन लोगों ने चारों तरफ मेरे कम से कम 15 लोग छोड़ रखे हैं, जो चारों तरफ से निगरानी रख रहे हैं मेरे ऊपर, मेरी हर मूव को देख रहे हैं. मैं घर से ना निकल पाऊं, ऑलमोस्ट इन्होंने एक अनऑफिशियल हाउस अरेस्ट पर रख लिया मुझे. और नरेंद्र मोदी से मैं कहना चाहूंगा, इतना भी मत डराओ किसी को कि सारा डर खत्म हो जाए. कितना दबा कर रखोगे लोगों को, जितना दबाओगे उतनी ज्यादा जोर से, उतनी तेज लोगों की आवाज निकलेगी. थोड़ा इतिहास पढ़कर देख लो, जब जब किसी बंदे ने डिक्टेटर बनने की कोशिश करी है, उसका अंत कैसे हुआ है, हिटलर का, मुसोलिनी का. थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करके देखो कि तानाशाही में तानाशाह का अंत भी अच्छा नहीं होता है. तो अभी के लिए बस थैंक यू आप सब लोगों का, थैंक यू सोनम वांगचुक जी का, क्योंकि उन्होंने भी सरकार को वार्न किया था कि अगर हमें एक दिन में रिलीज नहीं किया गया तो वो हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे. तो उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, और आप सब लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा. और मैं देश के लिए तो इसी तरीके से आवाज उठाता रहूंगा, चाहे कितना दबाने की कोशिश कर लो. जय हिंद, वंदे मातरम.
1: ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ.
2: ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ.
3: ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ. ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੱਲ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਮੌਤ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਰਦੀ

0: अल्बर्टा में संगठित अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। हम पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता के लिए $8 मिलियन का निवेश कर रहे हैं ताकि अल्बर्टा के परिवारों, व्यवसायों और समुदायों के लिए खतरा बने गैंग्स, एक्सटॉर्शन और आपराधिक नेटवर्कों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। यह धन कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अधिक मजबूत निगरानी, खुफिया जानकारी, डिजिटल फोरेंसिक और जांच क्षमताएं प्रदान करेगा ताकि संगठित आपराधिक गिरोहों को खत्म किया जा सके और अल्बर्टा वासियों को सुरक्षित रखा जा सके। अल्बर्टा सरकार की ओर से एक संदेश।
1: Whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app. Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community. Anytime, anywhere.
0: ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਟਵਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਲਬਰਟਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ। 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅਲਬਰਟਾ ਲਈ ਆਵਾਜ਼।

0: 80,000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਪਲੱਸ ਕਾਸਟ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੋਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਦੇ ਲਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਲੋਨ ਮਾਫ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਥੇਰੇ ਸਿੰਗਰ ਬਥੇਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 4-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 4-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਇਹ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਲੋ ਸੁਣਦੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ
1: हमारे पता क्या समस्या मूल समस्या क्या है कि हम वोट देने के बाद 5 साल चुप हो जाते हैं
2: लायबिलिटी नहीं है
1: हम लोकतंत्र का जीवंत हिस्सा नहीं बनते हम अगर 5 साल हम सरकार पर नजर रखें और थोड़ा हम अपने जो नेताओं के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल दिए देखिए वो जनप्रतिनिधि है उनका सम्मान कीजिए लेकिन मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूं कि वो आपके यहां शादी विवाह में आ रहे हैं मरने जीने में आ रहे हैं उनका जो सोशल मिसयूज हो रहा है
2: नहीं वो क्यों आ रहे हैं
1: और आप उनको आप उनको इतनी इज्जत क्यों देते हो अब अभी एक घटना हुई है कि हरियाणा के किसी बड़े ब्यूरोक्रेट के भाई का निधन हुआ है वहां ड्रामेबाजी चल रही है फोटो खिंचवा खिंचवा के दिखाने की ठीक है दुख सुख में शामिल होना एक अलग बात है लेकिन आप इतना महत्वपूर्ण क्यों समझ लेते हो कि जब तक स्थानीय विधायक स्थानीय सांसद बेटी की शादी में नहीं आएगा मेरे कार्यक्रम में नहीं आएगा तो मेरा अस्तित्व खतरे में है तो नेताओं को अब मैं कह रहा हूं इज्जत देना बंद करो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उनको जूते मारने शुरू कर दो लेकिन इतना महत्व मत दो कि वो अपने आप को
2: भगवान
1: सर्वोपरि भगवान समझने लगे विदेश में कहीं नहीं होता जिन अच्छे मुल्कों की आप बात कर रहे हो मुझे एक व्यक्ति ने बताया था कनाडा में वो कुछ टाइम रहा कि मैं एमपी के साथ इंडियन एमपी अपने काउंटर पार्ट के साथ में कनाडा में बोलो वहां कोई डीलिंग ही नहीं पब्लिक डीलिंग कोई व्यक्ति सांसद के पास जाता ही नहीं और हमारे पास हजारों लड़के हैं हमारे हरियाणा के सुबह ही सुबह कोई चंडीगढ़ भागा फिर रहा सफेद गाड़ी में कोई दिल्ली भागा फिर रहा है और साथ भर रखी है गाड़ी तेल फूंक रहे हैं लगातार भाई साहब के पास जा रहे हैं भाई साहब क्या रखा है इन भाई साहब
2: तेल की शॉर्टेज तो
1: देखो एक बात सुनो हमारा देश के लोग इतने पता नहीं अजीब स्थिति है जैसे ही एक नेता का बेटा राजनीति में प्रवेश होता है इन लोगों की सोच क्या होती नौजवान है नए ढंग से सोचता है विदेश में पढ़ लिख आया है ये कोई परिवर्तन करेगा टट्टू परिवर्तन नहीं करता
2: कुछ नहीं करता वो
1: उसे ये पता है कि मेरा बाप जिस रास्ते चला है वही ठीक
2: वो बारसा है वो फिर दूसरी चौटाला बन जाता है
1: सारे बन जाते
2: फिर टोटल सब पैसे कमाते हैं अपना मजे करते हैं लाइफ में आनंद
1: उन्हें पता ही नहीं है उनको तो ये कहा गया कि भाई आ जा अब सही मौका है वो आ गया और वो जो बाप ज्ञान देगा वो ज्ञान महत्वपूर्ण है कितने लोगों को मैंने सलाह दे रखी है
2: देश में
1: व्यवस्था बदल जाएगी देश बदल जाएगा ऐसे करना वैसे करना ट्रेडिशनल तरीके को छोड़ो इनोवेटिव तरीके को अपनाओ उससे जुड़ो दो दो घंटे मेरे मैंने बर्बाद कर रखे हैं भाई साहब और कोई असर नहीं उस मानस पे रत्ती भर भी बात पिताजी की समझ में आएगी चूंकि